आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप और ये है दिल का मेल बॉक्स। मैं हूं आपके साथ नीतू। और ये जो पहला गाना आपने सुना ये अभिनेत्री पद्मिनी को याद करते हुए प्रवीण सोनी और जगदीश जौहरी ने सुनना चाहा था। उम्मीद करते हैं आपने अपनी पसंद का गीत सुन लिया होगा। और आप भी अगर अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं, अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो fmgoldairdelhi@gmail.com पर जल्दी से लिख भेजिए अपनी पसंद के गीत के बोल और फिल्म का नाम अगर आपको पता है तो, और हम कोशिश करेंगे आपकी फरमाइश शामिल करने की। अभी जिनकी फरमाइश पूरी हो रही है वो हैं जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: FM गोल्ड पर नीतू के साथ हैं आप और ये है दिल का मेल बॉक्स, जिसमें अब बारी है अगले गाने की, जो कि है फहीम शालवाफ की पसंद का और ये है सफर फिल्म से गाना। और सफर फिल्म का गाना सुनकर वाकई दिल खुश हो जाता है। फिल्म भी बहुत अच्छी थी, अगर आपने देखी हो तो। फिलहाल तो गाने इंजॉय करते हैं।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सब के लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
4: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
7: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
6: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
7: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
6: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
7: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
8: पर्सनल लोन ऑफर
9: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
8: फ्री ट्रिप टू दुबई
9: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
10: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
9: तो क्या करूँ?
10: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
9: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
10: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

ये जो गाना आपने अभी सुना गैम्बलर फिल्म से, इसे सुनना चाहा था अफजाल, ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजल मलिक ने। और आप सुन रहे हैं दिल का मेल बॉक्स, मैं हूं नीतू आपके साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। और अब बारी है अगले गाने की, जिसे सुनना चाहा है फारूक अली खान, फैजी, फराज, ताहिरा, फरहीन, फरहान और फारिया ने।

भगवती सोलंकी, मधुराणी, अनीता वर्मा, कौशल्या देवी, दयावती, मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी और राधा नामदेव, इन सभी की फरमाइश पर आ रहा है प्रोग्राम का आखिरी गीत। आप इस गाने को एंजॉय कीजिए और नीतू को दीजिए इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए। श्री मोदी ने गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद के दौरान ये बात कही।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधारोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। यात्रियों ने लोगों से संवाद किया और विभिन्न सरकारी योजनाओं से मिल रहे लाभ पर सकारात्मक प्रतिक्रिया भी प्राप्त की। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के मुताबिक ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। ये बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में मृतकों के निकट परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों का इलाज और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। वित्त विभाग ने कहा है कि राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण वाले सभी विभाग

0: अधीनस्थ कार्यालयों और संगठनों को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद केवल जेम के माध्यम से करनी होगी। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दोपहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रूपये तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतरक्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलाव का सबसे अधिक असर विकासशील और अल्प विकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। जापान एशियाई खेलों में भारत की रोशिबीना देवी ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता और सतनाम सिंह तथा सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। रोशिबीना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शियाओ से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं और बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi today said that service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said that in politics too, service should remain the guiding principle even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanagar to Varanasi. The Prime Minister said, Seva Parmo Dharma, service is the highest duty, should remain the guiding principle.
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: During the interaction, Seva Yatris shared their experiences with the Prime Minister. They said that they planted saplings and conducted cleanliness drives as part of the campaign. They added that during the Yatra, they interacted with people and received their positive feedback on the benefits of various government schemes. The Delhi Cabinet has approved the Durga e-Auto scheme aimed at providing safe, clean and dignified employment opportunities to women and transgender persons in the national capital. Under the scheme, 1,300 pink electric autos will be allocated in the first phase. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath launched Bharat Taxi and Mukhyamantri Krishak Samriddhi Yojana, taking 2 major steps for taxi drivers and farmers. Through Bharat Taxi, 2-wheeler taxi and 3-wheeler drivers will be able to join on 0 commission upon registration. They will also receive social security of 5 lakh rupees. Its operations have started in Lucknow, Gorakhpur, Varanasi and Prayagraj. At least 9 passengers were burnt to death after a sleeper bus caught fire on the Yamuna Expressway in Greater Noida late last night. Several other passengers managed to escape by jumping out through the windows. According to police, the incident took place around midnight near Dayanatpur village under the Jewar police station area. Police said that the identities of the 9

तस्वीर शुरू हो गया है और आज हम जिस जगह की बात करेंगे वो वाराणसी से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वो जगह है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था और वो जगह भी जहां सम्राट अशोक की वो लाट संरक्षित है जिसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। ये है दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों में से एक और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सारनाथ। तस्वीर सुन रहे हैं आप नीतू के साथ 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर।

आज हम बात कर रहे हैं सारनाथ की। भगवान बुद्ध को बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद वो पहुंचे सारनाथ, जहां उन्होंने अपने पांच शिष्यों को पहला उपदेश दिया। उन्हीं पांच शिष्यों ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। यहाँ आपको प्राचीन खंडहर देखने को मिलेंगे जो ज्ञान प्राप्ति की कहानियां सुनाते हैं, जबकि बौद्ध धर्म की विरासत सारनाथ की शानदार वास्तुकला, ऊंचे स्तूप, मठ और मंदिर और बेहतरीन मूर्तियों में आज भी देखी जा सकती है। उस भव्यता का एहसास आप कर सकते हैं जब आप जाएंगे धामेक स्तूप देखने के लिए। धामेक स्तूप जो है वो 42 मीटर

ऊंचा है, लेकिन इसके अंदर जाने का कोई जरिया नहीं है, यानी कि एक सॉलिड स्तूप है जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था और यहाँ पर उनकी भी एक मूर्ति है। इस तरह के जो स्मारक हैं, खंडहर हैं, जो अवशेष हैं, उन्हें देखकर ना बहुत कुछ आपको समझ में आता है उस इतिहास के बारे में जो एक समय में बहुत भव्य था लेकिन अब सिर्फ उसकी निशानियाँ हैं।

सारनाथ में बहुत सारे बौद्ध मंदिर हैं और उन्हीं में से एक प्रमुख मंदिर है मूलगंध कुटी विहार, जिसे श्रीलंका टेंपल कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण श्रीलंका के राजा ने करवाया था। उनकी मूर्ति भी इस मंदिर परिसर में लगी हुई है। मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध की गोल्डन कलर की एक मूर्ति है और कहते हैं कि इस मंदिर में भगवान बुद्ध के अवशेष संरक्षित हैं, लेकिन उन्हें आम दिनों में नहीं देखा जा सकता। सिर्फ कार्तिक पूर्णिमा के दिन अस्थियों और मूर्तियों को निकाला जाता है और उस जगह पर ले जाया जाता है जहां उन्होंने उपदेश दिया था। वहां परिक्रमा करने के बाद उन अवशेषों को इसी मंदिर में दर्शन के लिए रख दिया जाता है। उस दिन यहां पर दुनिया के अलग अलग देशों से बहुत सारे बौद्ध अनुयायी आते हैं दर्शनों के लिए।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम,
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
4: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
3: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
4: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
3: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
4: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
5: Attention, national recognition for your hard work, for those making outstanding contributions to the animal husbandry and dairy sector and embracing innovative practices. The Department of Animal Husbandry and Dairy, Government of India, invites nominations for the prestigious National Gopal Ratna Awards 2026. The awards recognize excellence in three categories: Best Dairy Farmer, Best Dairy Cooperative Society, Best Artificial Insemination Technician. And there is more. Special provisions have been made for the Northeastern region and Himalayan states. Nomination period 10th August to September 30th, 2026. So what are you waiting for? Apply today at www.awards.gov.in or visit your nearest CSC center to submit your nomination. National Gopal Ratna Awards 2026, issued in public interest by the Department of Animal Husbandry and Dairy, Government of India.

101.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ ये है तस्वीर और आज हम बात कर रहे हैं सारनाथ की। और जब आप सारनाथ का नाम इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको भगवान बुद्ध की खड़ी हुई एक विशालकाय प्रतिमा दिखाई देगी। इसे ही देखने बहुत लोग यहां आते हैं। ये प्रतिमा है थाई मॉनेस्ट्री में। श्रीलंकन टेम्पल के अलावा यहाँ चाइनीज टेम्पल भी है। यानी सारनाथ देखा जाए तो सिर्फ वहां पर भारतीय ही नहीं बल्कि अलग अलग देश

की वास्तुकला और परंपराएं आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि बौद्ध धर्म को मानने वाले कई देशों ने यहाँ अपने अपने मठ और मंदिर बनाए हैं, जिससे ये जगह एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र बन गई है।

इतिहास में अगर आपको रुचि है तो सारनाथ संग्रहालय आपकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव हो सकता है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सबसे पुराना साइट म्यूजियम माना जाता है और यहाँ तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर मध्यकाल तक की बहुत सारी महत्वपूर्ण पुरावस्तुएं सुरक्षित हैं। लेकिन संग्रहालय का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण जो है वो मैंने आपको जैसे पहले बताया था अशोक चिन्ह, चार शेरों वाला राष्ट्रीय प्रतीक जिसे हम सरकारी दस्तावेजों और सिक्कों पर देखते हैं, उसे असल में आप इस म्यूजियम में देख सकते हैं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है तस्वीर। मैं हूँ नीतू और हम बातें कर रहे हैं एक ऐसी जगह की जो कि एकदम शांत है, जहाँ आपको बौद्ध भिक्षुओं के शांत मंत्रोच्चार सुनाई देंगे, जहाँ प्रार्थना चक्र हैं, ध्यान करते हुए श्रद्धालु हैं और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए पर्यटक, जो कि सारनाथ नाम की इस जगह को एक व्यापक रूप दे देते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं और देश विदेश से बहुत से बौद्ध अनुयायी यहाँ आते हैं। आप भी यहाँ जाना चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि जब मौसम सुहाना होता है ना तो स्मारकों को टटोलने के लिए सबसे अच्छा रहता है और पैदल चलने के लिए भी सबसे अच्छा, क्योंकि आप स्मारकों में तो बहुत दूर दूर तक बड़ी बड़ी जगह तक फैले होते हैं उनके खंडहर, उनके अवशेष, तो वहाँ आपको पैदल चलना है, उन्हें अच्छे से समझना है, तो सबसे अच्छा जरिया है कि आप अच्छे मौसम में जाएं ताकि आप हर चीज को ठीक से देख पाएं, महसूस कर पाएं।

सारनाथ पहुंचने के लिए प्रमुख हवाई अड्डा और जंक्शन वाराणसी में ही है। वहां से आपको ऑटो या टैक्सी लेकर सारनाथ पहुंचना होगा। अगर आप वाराणसी घूमने जा रहे हैं तो और भी अच्छा है, आप सारनाथ भी घूम आइए, बिल्कुल पास है। और दोनों जगह लेकिन जो है वो काफी कॉन्ट्रास्ट है दोनों जगहों में। वाराणसी जहां भीड़ भाड़ वाली चहल पहल वाली जगह है, वहीं सारनाथ शांत जगह है। और जिंदगी में चहल पहल भाग दौड़ के बाद शांति की चाहत तो होती ही है ना, और शांति के बाद फिर से उसी जद्दोजहद में जाने की तमन्ना जहां से हम निकल कर आए थे। ऐसी ही है ना लाइफ, किसी एक ठिकाने पर टिकती नहीं है, ना ही किसी एक चीज से खुशी मिलती है। एक मंजिल के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। वो शेर कहना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ये जिंदगी ऐसी ही है, सब कुछ मिल जाए तब भी हम खुश नहीं होते कभी कभी, और जब कुछ नहीं होता है तब तो खैर बात ही क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हर चीज से परेशान होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं होता वो उसमें भी खुशी ढूंढ लेते हैं।

इसी के साथ अब वक्त हो गया है कि नीतू आपसे इजाजत ले ले, क्योंकि तस्वीर का समय यहीं पर समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए। श्री मोदी ने गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद के दौरान ये बात कही।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधारोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डेविड वाडेफुल और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु शामिल हुए। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। बैठक में सहयोग मंच के शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा भी हुई। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में यह अभियान शुरू किया गया था। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान

0: बचाई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी, इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में मृतकों के निकटतम परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों का इलाज और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जापान एशियाई खेलों में भारत की रोशिबीना देवी नाउरेम ने वुशू में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said in politics too, service should remain the guiding principle even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi. The Prime Minister said Seva Paramo Dharma, service is the highest duty, should remain the guiding principle.
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: During the interaction, Seva Yatris shared their experiences with the Prime Minister. They said they planted saplings and conducted cleanliness drives as part of the campaign. They added that during the Yatra, they interacted with people and received their positive feedback on the benefits of various government schemes. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani at 11 a.m. on Sunday. It will be the 138th episode, which will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired a meeting of the foreign ministers of the Forum for Indo-Pacific Islands Cooperation, FIPIC, on the sidelines of the 81st United Nations General Assembly in New York yesterday. The meeting reaffirmed the commitment to further strengthen the FIPIC partnership and cooperation in regional and multilateral fora. It was the second foreign ministers' meeting held under the FIPIC framework. Meanwhile, the foreign ministers of the G4 countries, India, Brazil, Germany and Japan, have called for early reform of the United Nations Security Council, UNSC. In a joint ministerial statement, they emphasized that expansion of the Council in both permanent and non-permanent categories is central to the reform. At least 9 passengers were burnt to death after a sleeper bus caught fire on the Yamuna Expressway in Greater Noida late last night. Several other passengers managed to escape by jumping out through the windows. According to police, the incident took place around midnight near Dayanathpur village under the Jewar police station area. Police said identities of the 9 deceased passengers have not yet been ascertained. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime

0: ngân.
1: नमस्कार। आज सुबह जब खिड़की खुली दोस्तों, तो हवा में सच बताऊं वो पहली ठंडक महसूस हुई जो बताती है कि मौसम अब करवट लेने लगा है। उसी ठंडी हवा के साथ हम आपके बीच फिर से हाजिर हैं और कार्यक्रम है आपका अपना घर आंगन। और स्वीकार कीजिए रश्मि कुकरेती का और
2: मेरा यानी श्रुति पुरी का नमस्कार। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको सुनाई देता है आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर भी इसे सुना जा सकता है। और जो श्रोता डिजिटल माध्यम से हमसे जुड़े रहना पसंद करते हैं, उनके लिए हम मौजूद हैं YouTube के चैनल AIR News Live 24/7 पर।
1: भाई वाह, क्या बात है श्रुति जी, बड़ी जबरदस्त आपने गाड़ी चलाई। लेकिन मेरा तो ये कहना, मेरा क्या, संत कबीर का ये कहना है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। यानी जिंदगी में जल्दबाजी से नहीं बल्कि धैर्य और सहजता से ही चलने पर असली सफलता मिलती है।
2: बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही है आपने। और वैसे भी रश्मि जी, अब त्योहारों का मौसम आ रहा है और धीरे धीरे ये ना हमारे घर आंगन में भी दस्तक दे रहा है और हमने तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। तो इसी उत्सव के माहौल को ध्यान में रखते हुए हम अपने श्रोताओं से एक सवाल पूछना चाहते हैं।
1: मीठा मीठा सवाल।
2: हाँ, मीठा मीठा सवाल। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि बताइए, घर में कोई खास मौका या त्योहार आने पर आप मीठे में सबसे पहले क्या बनाना तय करते हैं? और अपने जवाब हमें भेजिए हमारी ईमेल आईडी fmgoldga@gmail.com पर। ईमेल आईडी एक बार फिर नोट करिए, fmgoldga@gmail.com पर। और जब तक आपके जवाब हम तक पहुंचे, आइए सुनते हैं ये गीत।

0: पेइंग गेस्ट। इस फिल्म में अभी आप आशा भोसले और किशोर कुमार को सुन रहे थे। रश्मि देखो, पिछले हफ्ते किसी रिश्तेदार से बात हो रही थी मेरी जो मुंबई में रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि उनके घर की खिड़की से बंदरगाह पे लगे बड़े बड़े जहाज दिखते हैं। ये सुनकर मन में एक पुरानी बात ताजा हो गई कि हमारा देश तो सदियों से समुन्द्र से जुड़ा हुआ है। और आज यानी 24 सितंबर को हर साल विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है
1: जी।
0: और इस बार अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने इस साल 2026 और 27 दोनों के लिए एक साझा विषय दिया है जिसका भाव है नीति को व्यवहार में बदलना और समुद्री उत्कृष्टता को शक्ति देना।
1: बिल्कुल। और भाई

0: जो भारत है वो तो उसके व्यापार का बड़ा हिस्सा समुद्री रास्तों से होकर गुजरता है श्रुति, और हमारे नाविक और मछुआरे परिवार इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ है। तो भाई उनकी मेहनत के बिना ना तो बंदरगाह चलेंगे ना ही व्यापार आगे बढ़ेगा। और देखिए ना संभावनाएं समुद्री पर्यटन की कितनी अपार संभावना है, गोवा, केरल, उड़ीसा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तमिलनाडु, गुजरात के तट, और इसके अलावा जिसे कहते हैं जैव विविधता, मछुआरे समुदाय और जलवायु संतुलन का एक महत्वपूर्ण आधार है समुद्र। तो भाई इन तटीय परिवारों को हमारा प्रणाम, जिनकी वजह से हमारे घरों तक इतनी सारी चीजें पहुंच पाती हैं।
1: बिल्कुल
0: है।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म समुंदर में।
1: श्रुति, कल शाम को मुझे एक जगह ना ढोल बजने की आवाज आई, तो ना सच बताऊं कि मेरा जो मन है ना एकदम अपने गांव के मेले में पहुंच गया। वहां ना इतनी भीड़ और इतनी रौनक और इतने रंग एक साथ होते थे, और वहां ना एक हर साल एक मेला लगता था जिसमें झूले होते थे और मिट्टी के खिलौने होते थे, और सच बताऊं वो मशहूर जलेबी वाला जिसकी दुकान पर सबसे लंबी कतार लगती थी।
0: असल में गांव में लगने वाले मेले सिर्फ मनोरंजन की नहीं होते बल्कि हमारी गांव की संस्कृति की धड़कन हुआ करते हैं। फसल कटने के बाद पूरे साल की मेहनत का उत्सव इसी मेले में मनाया जाता है, और तभी लोकगीत गाए जाते हैं। कठपुतली, नौटंकी जैसी लोक कलाओं का मंचन तो पुराने समय में कितना हुआ करता था, और साथ ही जो गांव के कारीगरों को भी अपनी मेहनत को बेचने का ये मौका सबसे बढ़िया मिलता था।
1: बिल्कुल, और जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं और जो हमारे बुनकर हैं, लकड़ी के खिलौने गढ़ने वाले जो कारीगर हैं, भाई पूरे साल इन्हीं मेलों के इंतजार में ही तो रहते थे, क्योंकि उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा यहीं से आता था। यानी ये छोटे छोटे मेले गाँव की अर्थव्यवस्था की एक अहम कड़ी हुआ करते थे।
0: देखो, भारत में तो कुछ मेलों का इतिहास सदियों नहीं बल्कि हजारों साल पुराना माना जाता है। जैसे राजस्थान का पुष्कर मेला सदियों पुराना ऊंट मेला है जो हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है, और आज भी दुनिया भर के लोग इसे देखने आते हैं। इसी तरह बिहार का सोनपुर मेला जिसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है, एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़े पशु मेलों में गिना जाता है ये मेला।
1: जी, और जो अब देखो आपने कहा था ना भाई सवेरे थोड़ा थोड़ा ठंडक सी जो महसूस हो रही है, तो अब हमें मेलों की भी याद आने लग गई। और भाई हमारे जो हरियाणा का सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी आएगा, और बहुत खूबसूरत वो मेला होता है। कुशल कारीगरों को मंच देने के लिए वो शुरू किया गया था।
0: और आपको एक बात बताऊं कि इस मेले में देश के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के भी हजारों शिल्पकार और लाखों दर्शक पहुंचते हैं। और इसी तरह मेरठ का नौचंदी मेला तो आपको याद ही होगा, और अभी देखो नवरात्रे आने वाले हैं, नवरात्रों में नरी सैमरी का मेला लगता है, कैला देवी का मेला लगता है, और करौली का मेला भी बड़ा प्रसिद्ध मेला है।
1: वही श्रुति, वक्त के साथ इन मेलों का स्वरूप भी बदल गया है। पहले जहाँ ये छोटे कस्बों और गाँव का सामाजिक केंद्र हुआ करते थे, वहीं आज जो ये मेले हैं ना बड़े संगठित आयोजन और प्रदर्शनी का रूप ले चुके हैं, जहां जो कारीगर हैं वो सीधे बड़े बाजार और खरीदारों तक पहुंचने का उन्हें मौका मिलता है।
0: देखो फिर भी उनकी आत्मा वही पुरानी है, आज भी अगर मौका मिले तो किसी नजदीकी मेले में जाकर वो पुराना अनुभव फिर से जिया जा सकता है कि नहीं।

0: अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे थे, फिल्म थी राजा रानी।
1: और मेलों से हम वापस आते हैं अपने घर की ओर। जो मीठा
0: हाँ,
1: आप पूछ रही थी ना श्रुति जी, तो जवाब आ चुका है हमेशा की
0: बल्कि
1: तरह।
0: बल्कि मैं कहूंगी मेलों से मेलों पर आते
1: जी,
0: हैं।
1: मेलों से मेल पर आते हैं। तो
0: जी
1: पहली मेल आ गई है नवीन भाटिया जी
0: जी
1: मोती नगर से, हमारे साथ जुड़।

0: हैं, कह रहे हैं कि हमें पसंद है भाई बेसन के लड्डू, बहुत बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं बेसन के लड्डू को। नवीन भाटिया जी आगे
1: देखो, मेरे पास भी एक मेल आई है, ये आई है डॉक्टर राजेश्वर राव जी की। ये लिखते हैं कि हम तो पायसम बनाने में बड़ा मजा आता है, और जिसे हिंदी में खीर कहते हैं, विद ड्राई फ्रूट्स, और पायसम में तो और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं और बड़ी स्वादिष्ट होती है पायसम खाने
0: जी।
1: में।
0: और हमारे साथ जुड़ गए हैं उमेश कुमार ख्याला से, और लिख रहे हैं कि त्योहारों पर हलवा बनाते हैं और प्रोग्राम और गाने जो है वो साथ में होते हैं, तो भाई अब बहुत अच्छा लगता है हमें। भाई क्या बात है, मीठे मीठे गीतों और मीठा मीठा हलवा, तो भाई ये तो जबरदस्त एक जोड़ी बन
1: और
0: जाती है।
1: देखिए, हलवा किसी और के यहाँ भी बनाया जाता
0: जी
1: है।
0: कहाँ
1: ये है सुदर्शन मुखी जी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से।
0: अच्छा
1: ये लिखते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो सूजी का हलवा और दूध की खीर बनती है।
0: भाई क्या बात है, भाई हम तो कहते हैं ना ये दिल है देसी, भाई जो देसी खाने में जो मजा है अपना, जो भारतीय खान पान है वो गजब है। और एक और मेल आया है शशि भूषण आदर्श नगर दिल्ली से, कह रहे हैं कि मीठे में खीर बनाते हैं, तो भाई देखिए दिल है देसी बिल्कुल, है ना।
1: बिल्कुल, और देसी अगर दिल है तो गाना भी देसी होना चाहिए
0: जी हाँ,
1: ना।
0: तो ऐसे ही खत लिखते रहिए, मेल लिखते रहिए और जुड़े रहिए FM गोल्ड के साथ।

0: देखिए रश्मि जी, कितना प्यारा गीत अभी हमने श्रोताओं को सुनाया, और ये गीत था फिल्म आए दिन बहार के, इस फिल्म से हमने लिया था, और गायिका थी आशा भोसले। और क्या हुआ रश्मि जी, एक मैं आपसे एक वाकया वो करना चाहती थी साझा। पिछले हफ्ते मैं ना घर की सफाई कर रही थी, और एक दराज खुली तो उसमें न जाने कितने पुराने चार्जर और दो खराब मोबाइल पड़े हुए थे। तभी ख्याल आया कि ऐसा तो शायद हर घर में होता होगा।
1: जी, और ये जो पुराना जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है ना, इसको कहा जाता है ई कचरा, और भारत में इसके सुरक्षित निपटान के लिए ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए गए हैं। और इन नियमों के तहत हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है श्रुति, कि वो पुराना मोबाइल और पुरानी बैटरी या खराब उपकरण सामान्य कूड़े में ना फेंके। जी
0: और सबसे अच्छा तरीका यही है कि इन्हें अधिकृत ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर तक पहुंचाया जाए। कई मोबाइल कंपनियां और शोरूम भी आजकल तो पुराना फोन वापस लेने की सुविधा दे रहे हैं, और एक्चुअली इन जो उपकरणों में हानिकारक तत्व होते हैं, जो अगर मिट्टी और पानी में मिल जाएं तो सेहत को बड़ा नुकसान साबित हो सकता है।
1: और देखिए, जो पुराना सामान जो होता है ना, वो कबाड़ी वाले को दे दिया जाता है, वो भी हम कहेंगे तो वो सही नहीं होता, क्योंकि ये असंगठित जो बाजार में इन्हें बिना किसी सुरक्षा के लिए अगर तोड़ा जाता है तो ये खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए जब अगली बार अपने घर से श्रुति कोई पुराना मोबाइल या बैटरी निकाले, तो भाई
0: बिल्कुल
1: थोड़ी सजगता जरूर रखें और उन्हें आप सही जगह पहुंचाएं, ये मेरी आपसे प्रार्थना है।
0: और मेरी प्रार्थना ये है कि अगला गीत सुने।
1: जी

0: शर्मीली फिल्म में अभी आप किशोर कुमार और लता मंगेशकर को सुन रहे थे। रश्मि, आज सुबह जब चाय बनाते वक्त शहद की शीशी मेरे हाथ में आई ना, मैं शहद वाली चाय पीती हूँ, तो एक पुराना सवाल मेरे मन में कौंधा। आपको पता है कि मिस्र में हजारों साल पुराना शहद मिला है, वो आज भी खाने लायक है।
1: अच्छा श्रुति, ये ना इस बड़ा दिलचस्प विज्ञान है इसके पीछे। दरअसल क्या होता है, शहद में ना पानी की मात्रा बहुत कम होती है और ये हवा से नमी खींचने का गुण रखता है, जिसमें बैक्टीरिया के लिए जीवित रहना बिल्कुल असंभव हो जाता है।
0: हाँ, तभी तो शहद का जो पीएच स्तर है ना, वो काफी अम्लीय होता है और लगभग 3 से 4.5 के बीच, जैसे नींबू के रस में होता है, वो भी तो अम्लीय माना जाता है। तो इस माहौल में ज्यादातर जो सूक्ष्म जीव हैं वो पनप ही नहीं पाते।
1: और इसके अलावा श्रुति, मधुमक्खियां जो हैं वो शहद बनाते समय एक एंजाइम भी छोड़ती हैं, जिसमें हल्की मात्रा में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, और ये भी एक प्राकृतिक कीटाणुनाशक की तरह काम करता है।
0: यही तो वजह है कि हमारी नानी दादी हमेशा कहा करती थी

0: कि शहद को कभी फ्रिज में मत रखो, बस उसे तो कस के बंद करके बर्तन
1: में। क्या बात है श्रुति, आज तो मीठा मीठा बिल्कुल मीठे मीठे गीत सुना रहे हो, मीठा बनवा रही हो और शहद के बारे में बता रही हो।
0: एक काम करते हैं, मीठा नहीं, आपको थोड़ा खट्टा मीठा एहसास दिला देते हैं इस गीत से
1: जी।

0: पर एक ना भीनी सी मुस्कान ना, दोनों साथ साथ उतर आती हैं। तो पप्पा की विदाई का दिन बस आने ही वाला है, और जो लोग 2 दिन 3 दिन के गणपति रखते हैं वो लोग भी लगातार उनकी विदाई कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, इस विदाई को कैसे भव्य बनाया जाए, दिव्य बनाया जाए, और साथ ही धरती के प्रति जिम्मेदारी भी हम अपनी निभाई जाए, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये विसर्जन नदी या तालाब में सीधे करने की जगह अब कई शहरों में नगर निगम ने कृत्रिम कुंड और मोबाइल टैंकों की व्यवस्था की है,
0: जी
1: जहां विसर्जन करने से नदी का जल जो है वो भी शुद्ध रहेगा और विधि विधान भी पूरा हो पाएगा।
0: जी और अगर जुलूस की बात करें श्रुति, तो भाई ढोल ताशे भजन और कीर्तन से माहौल को इतना ही उत्सवी बनाया जा सकता है। बस ध्यान देना ये है कि रात 10 बजे के बाद आप लाउडस्पीकर की आवाज थोड़ी सी धीमी कर दें, ताकि किसी को तकलीफ ना हो।
1: जी
0: और
1: बिल्कुल।
0: जो फूल माला हम बड़े प्रेम से चढ़ाते हैं, नारियल जैसी जो पूजा सामग्री हो, उसको पानी में बहाने की जगह जो निर्माल्य है, निर्माल्य कलश में डाला जाए। और सच बताऊं, बहुत सी जगह ना इसे खाद बनाने के लिए भी काम में लाया जाता है।
1: बिल्कुल ठीक कह रही हो, यानी बप्पा का प्रसाद धरती के लिए भी वरदान बन सकता है। जो कल बप्पा की विदाई करें तो दिल में धरती के लिए भी उतनी ही श्रद्धा रखें, उतनी ही सच्चाई और उतनी ही भव्यता और दिव्यता से गणपति को विदाई दें।
0: जी, और ताकि वो अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: खट्टा मीठा फिल्म में अभी आप किशोर कुमार और उषा मंगेशकर को सुन रहे थे।
1: और श्रुति, घर की दहलीज पे जो है गणपति बप्पा जब अपने धाम लौटने की तैयारी करते हैं ना, तो सच बताऊं हर और एक खामोशी उदासी।

0: साथ दो लोग और जुड़ गए हैं, राजू अग्रवाल, केशव प्रियांशी, विवेक चौधरी। वैसे कहते हैं जो भी खाना बना हो लेकिन जरूरी यह है कि वो बाजारी खान पान से जो है रसायनों से मुक्त हो। और साथ में गौरीशंकर जी जुड़ गए हैं रोहतक से, कह रहे हैं कि भाई खसखस का हलवा या पोस्त का हलवा उसको रात को भिगो दें और सुबह सिलबट्टे पर पीस कर बादाम मिला दें और दिमाग के लिए दवाई का काम करता है, और दूध भी डालना पड़ता है पूरी सर्दी ये खाएं और रोजाना और सुबह शरीर के में ताकत का भी काम करता है। शुक्रिया गौरीशंकर जी।
1: और देखो रश्मि, इन सारी बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। हाँ, हम अपने श्रोताओं के जवाब भी हम भूले नहीं, हमने सभी श्रोताओं को जवाब दिए हैं, और लेकिन श्रोता हमें मेल करते रहे, हमें पूरी उत्सुकता से इंतजार रहेगा। तो अब इस घर आंगन में थोड़ा सा सुस्ताना चाहिए कि नहीं?
0: पर ये आंगन सुना नहीं होगा क्योंकि इसमें आपकी यादें हैं, और हम इसी के साथ इजाजत लेते हैं जाने की, और साथ में कहते हैं
1: कि आप सभी को बहुत सारा स्नेह हमारी तरफ से, बहुत सारी शुभकामनाएं आने वाले त्योहारों की, और हम फिर से इस घर आंगन में आपको मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे श्रुति पुरी
0: और रश्मि कुकरेती को दीजिए आज्ञा, नमस्कार
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए। श्री मोदी ने गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान संवाद में ये बात कही।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव भी साझा किए। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डेविड वाडेफुल और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु शामिल हुए। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। डॉ एस जयशंकर ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। बैठक में सहयोग मंच के शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा हुई। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सहमेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया था। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में मृतकों के निकट परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जापान एशियाई खेलों में अनंत जीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने 44 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले रोशिबीना देवी नाउरेम ने वुशु में महिलाओं के 60

किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही टीम का पदक भी सुनिश्चित हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्स। वक्त हो गया है कलाकार बेमिसाल का। आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात करेंगे अभिनेता फिरोज खान की। फिरोज खान एक अभिनेता होने के साथ साथ फिल्म निर्माता और निर्देशक भी थे। वो हिंदी फिल्मों के मोस्ट स्टाइलिश एक्टर्स में से एक थे। उस दौर में उनके गुड लुक्स और स्टाइल ने फैंस का दिल जीता और वो सबके चहेते बन गए थे। फिरोज खान ने अपने करियर में 60 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और फिल्मों के लोकप्रिय स्टाइल आइकन्स में से एक बन गए थे। उनके फिल्मों की बात की जाए तो आरजू, सफर, मेला, अपराध, खोटे सिक्के, काला सोना, धर्मात्मा, नागिन, कुर्बानी, जांबाज और वेलकम जैसी बेहतरीन फिल्मों में दमदार भूमिकाओं से फिरोज ने सभी का दिल जीता है। तो आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम उन्हीं की बात करेंगे, उनके जीवन से जुड़ी, करियर से जुड़ी बातें हम करेंगे। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं रुचिका आपके साथ।

जी हाँ, फिरोज खान के चेहरे में वो जादू जरूर था जिसने हम सबको उन पर फिदा कर दिया था। उस दौर में उनके गुड लुक्स और स्टाइल ने फैंस का दिल जीता था और फिरोज खान सबके चहेते बन गए थे। आज कलाकार बेमिसाल के जरिए आज हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। आपको बता दें, फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर 1939 को बेंगलोर में हुआ था। उनका असली नाम जुल्फिकार अली शाह खान था। वो एक अभिनेता होने के साथ साथ फिल्म निर्माता और निर्देशक भी थे। उनके निर्देशन में बनी कुछ फिल्में आज भी आइकॉनिक मानी जाती हैं। अच्छी कहानी के साथ दमदार संगीत उनकी फिल्मों का हिस्सा रहा। आपको बता दें कि 70-80 के दशक में सबसे हैंडसम हीरोज में से एक फिरोज को इंडस्ट्री का काउबॉय भी कहा जाता था। आज भी फिरोज खान हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए खास तौर से जाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में 60 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें आरजू, सफर, मेला, अपराध, खोटे सिक्के, काला सोना, उपासना, धर्मात्मा, नागिन, कुर्बानी, जाबाज जैसी सफल हिंदी फिल्मों में बेहतरीन भूमिकाओं से फिरोज खान ने हम सबका दिल जीता।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूँ?
4: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
0: जी हाँ, FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप बने हुए हैं और आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात कर रहे हैं अभिनेता फिरोज खान की।

जी हाँ, FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ हम बने हुए हैं और आपको बता दें कि आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात कर रहे हैं अभिनेता, निर्माता और निर्देशक फिरोज खान की। वे कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रहे जिनमें आरजू, सफर, मेला, अपराध, खोटे सिक्के, उपासना, काला सोना, धर्मात्मा, नागिन, कुर्बानी, जांबाज जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। उनके शुरुआती दौर की बात की जाए तो अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद फिरोज खान मुंबई आए और उन्होंने पहली फिल्म 1956 में की थी जिसमें उनका एक छोटा सा किरदार था। इस फिल्म का नाम हम सब चोर है था। इसके बाद उन्होंने जमाना, बड़े सरकार और दीदी जैसी फिल्मों में सेकंड लीड के तौर पर काम किया था। 1960 और 70 के दौरान फिरोज खान ने कई फिल्मों में अभिनय किया। बतौर अभिनेता उनकी पहली फिल्म घर की लाज थी जिसमें उनके ऑपोजिट निरूपा रॉय ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फनी मजूमदार की फिल्म ऊंचे लोग उनके करियर की पहली सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी और उसके बाद तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो चलिए फिलहाल आप तक पहुंचाते हैं एक सुपरहिट गीत फिल्म जांबाज से, जो पिक्चराइज्ड है फिरोज खान और श्रीदेवी पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं।

या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात कर रहे हैं अभिनेता, निर्माता और निर्देशक फिरोज खान की। फिल्मी दुनिया में कई ऐसे कलाकार हुए जो हमेशा अपनी शर्तों पर काम करना पसंद करते थे और करते हैं, और उन्हीं कलाकारों में से एक थे फिरोज खान, जिनकी आज हम बात कर रहे हैं कलाकार बेमिसाल के जरिए। उनका एक किस्सा बेहद मशहूर है। 1976 की बात है, प्रकाश मेहरा फिल्म हेरा फेरी का ऑफर लेकर प्रपोज

उस फिल्म का प्रपोजल लेकर फिरोज खान के पास पहुंचे, लेकिन फिरोज खान ने ये फिल्म ठुकरा दी क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग जो थी वो संडे को थी और फिरोज खान ने कहा कि हम संडे को काम नहीं करते। ऐसा कहकर उन्होंने फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया और फिरोज के बाद ये फिल्म अमिताभ बच्चन की झोली में आकर गिरी। तो ऐसे ही थे हमारे फिरोज खान। तो चलिए एक और गीत सुनते हैं फिल्म कुर्बानी से, और कलाकार बेमिसाल का सफर जारी रहेगा। सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

मीडियम में 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज और साथ ही एफएम फ्रीक्वेंसी 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। आज सन 2026 सितंबर महीने की 24 तारीख और शुभ दिन है गुरुवार। श्रोताओं, आकाशवाणी के तवंग केंद्र से हमारा आज का प्रसारण आरंभ होता है। अब से लेकर प्रसारण के अंत तक यानी रात्रि 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम कक्ष में उपस्थित कार्यक्रम सहायक श्रीमती संगीत सुमो, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री तानिंग ताको और श्री न्यूटन बोरा, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अच्युत परमन और श्री हेमंता सुरगिरी, मोनपा में उद्घोषक श्री संगीत टाशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका यशी वंगमो। कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के इस प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अब से कुछ ही पलों में यानी दोपहर 2 बजे आप सुन सकेंगे मीट

टी न्यूज के अंतर्गत अंग्रेजी में समाचार तत्पश्चात दोपहर 2:15 पर सुनेगा दोपहर समाचार के तहत हिंदी में समाचार। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights service as the main purpose of life, says Seva Paramo Dharma should remain the guiding principle. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs meeting of Forum for India-Pacific Islands Cooperation Foreign Ministers on the sidelines of 81st United Nations General Assembly in New York. Government says India is manufacturing nearly 99.2% of country's total domestic demand for mobile phones. Red alert issued for very heavy rainfall over West Bengal, Telangana, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh and Odisha today. And India storms into men's Kabaddi semi-finals after beating Chinese Taipei in final Group A fixture at Asian Games in Japan. Prime Minister Narendra Modi today said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said that in politics too, service should remain the guiding principle even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi. The Prime Minister said Seva Paramo Dharma, service is the highest duty, should remain the guiding principle.
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: Mr. Modi said service is the biggest driving force. He said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery. The Prime Minister said it is only owing to a spirit of service that 4 crore poor have received permanent houses.
1: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
0: The Prime Minister said we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India. He said everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047.
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी, और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है, और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired a meeting of the foreign ministers of the Forum for India-Pacific Islands Cooperation, FIPIC, on the sidelines of the 81st United Nations General Assembly in New York yesterday. The meeting reaffirmed the commitment to further strengthen the FIPIC partnership and cooperation in regional and multilateral fora. It was the second foreign ministers' meeting held under the FIPIC framework. During the meeting, the participating leaders reviewed the outcomes of the FIPIC summits and welcomed the progress in Indo-Pacific Island countries' cooperation, including under the 12-point action plan announced by Prime Minister Narendra Modi in 2023. They also discussed further cooperation in renewable energy, climate action, disaster resilience, education, healthcare, and capacity building. Electronics and IT Secretary S. Krishnan has said India is manufacturing nearly 99.2% of the country's total domestic demand for mobile phones. Addressing the inaugural session of the 13th Annual Public Affairs Forum of India 2026 in New Delhi today, Mr. Krishnan said India manufactures around 32 to 33 crore mobile phones annually.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया, कहा सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स्ड निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम आखिरी ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य सेवा हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम छोर तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है।
1: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए। एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
0: श्री मोदी ने कहा कि सेवा की भावना से ही 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सेवा की भावना देश की नीतियों में शामिल होती है तो ऐसी योजनाएं सामने आती हैं जिनसे 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति, चुनाव और शासन व्यवस्था का अपना महत्व है, लेकिन देश के निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया।
1: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
0: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधरोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग स्वच्छता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 6.0 चलाएगा। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का तेजी से निपटान करना और शासन में सुधार करना है। ये अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा है।
2: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, लचीला और विद्यार्थी केंद्रित बनाना है। इसके तहत उच्च शिक्षा में विषय के चयन में विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता, बहुविषयक अध्ययन, कौशल विकास, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा

0: नीति 2020 को देश भर में लागू करने की दिशा में ओडिशा भी लगातार आगे बढ़ रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा संस्थानों में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का ध्यान विद्यार्थियों को पारंपरिक डिग्री के साथ साथ रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इसके अलावा भारतीय भाषाओं, स्थानीय आवश्यकताओं और तकनीकी शिक्षा को भी नई शिक्षा व्यवस्था में जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ शोध और नवाचार के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन और उच्च शिक्षा में इसके प्रभाव को लेकर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहते हैं,
1: 2024 में नई सरकार गठन होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने संरचनात्मक और शैक्षणिक सुधार के लिए हमेशा प्राथमिकता दिया है। कौशल विकास और उद्योग संपर्क के लिए AEDP, अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, नास्कम, फ्यूचर स्किल, कोर्सेरा जैसे कार्यक्रम को अपनाए हैं। इंटर्नशिप बहुत अच्छी तरीके से उड़ीसा में हो रहा है।
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन केवल पाठ्यक्रम में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और अवसरों से सशक्त बनाना है। ओडिशा में नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू करते हुए उच्च शिक्षा को बेहतर और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। भुवनेश्वर से दीपक कुमार बेहरा के साथ मैं इतिश्री सिंह राठौर।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
4: बैठक में FIPIC शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा की गई और भारत तथा प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग में हुई प्रगति का स्वागत किया गया। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2023 में घोषित 12 सूत्रीय कार्य योजना के तहत हुई प्रगति भी शामिल है। नेताओं ने नवीनीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्यवाही, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। बैठक में समाओ के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तथा फिजी, मार्शल द्वीप समूह, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह और तुवालु के विदेश मंत्री शामिल हुए। तोंगा के वित्त मंत्री ने भी बैठक में भाग लिया। इसके अलावा माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों के न्याय विभाग के सचिव और अटॉर्नी जनरल, वानुअतु के स्वास्थ्य मंत्री, नाउरू के उप विदेश मंत्री तथा प्रशांत द्वीप मंच के महासचिव भी बैठक में उपस्थित थे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में यह अभियान शुरू किया गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि भारत में मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% विनिर्माण होता है। नई दिल्ली में आज 13वें वार्षिक पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के उद्घाटन सत्र में श्री कृष्णन ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 32 से 33 करोड़ मोबाइल फोन विनिर्मित होते हैं।
5: हम देश में अपनी कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% खुद तैयार करते हैं। भारत में होने वाला मूल्यवर्धन जो लगभग 7-8 साल पहले करीब 10-15% था, अब वो बढ़कर लगभग 22-23% हो गया है। हमारा लक्ष्य 35-40% के बीच मूल्यवर्धन

0: धन हासिल करना है। इस उद्योग को देश में ही बनाए रखने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है।
1: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दक्षिणी तट को पार कर गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कई स्थानों पर जल भराव और बाढ़ की स्थिति बन गई है।
3: कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा के तट को पार करने के बाद गहरा डिप्रेशन जमीन के अंदर की ओर बढ़ गया है और धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। उड़ीसा में इसका असर अभी भी महसूस किया जा रहा है। आज कोरापुट, नवरंगपुर, मालकानगिरी, कलाहंडी, नुआपड़ा, बलांगीर और बरगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश और कल व परसों बहुत भारी बारिश के साथ साथ आंधी, तूफान, बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है, जबकि भूस्खलन के खतरे के कारण 157 का कलिंगा घाट वाला हिस्सा बंद कर दिया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: और अब एशियाई खेलों की आज की अपडेट के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
0: जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने 44 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले रोशिबिना देवी नाओरेम ने वुशू में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। रोशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शियायोउ से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने 6:13.25 का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए के मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में भी प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही टीम का पदक भी पक्का हो गया है। अब पदक तालिका में भारत के कुल पदक की संख्या 15 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया। कहा, सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा, भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार तत्पर।

हिंदी में समाचार। आपके सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं, समय दोपहर के 2:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। इसके अंतर्गत आइए सुनते हैं नरेंद्र चंचल के स्वर में चंद हिंदी भक्ति गीत। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।

आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत। इन्हीं भक्ति गीतों के साथ ही दैनिक कार्यक्रम वंदना भी पर समाप्त होता है। मीडियम एफ के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोतों समय दोपहर के 3:03 बजे है। डीजे श्रोतों और प्रस्तुत है विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इसके अंतर्गत आइए आनंद लेते हैं कुमार सानू के आवास में चंद बांग्ला आधुनिक नगमे। तो आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

श्रोताओं में पाना ले रहे थे कुमार सानू के आवाज में चंद बांग्ला आधुनिक नगमे। इन्हीं नगमों के साथ ही अलग अलग प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अभी पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं समय दोपहर के 3:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम मेला मंच। कार्यक्रम मेला मंच के अंतर्गत आइए सुनते हैं मेजर रेलिंगनो फोफ खातिंग की वीरता का संग्रहालय और इसका महत्व विषय पर म्यूजियम कोऑर्डिनेटर मिस सैंडली लेगम सिंगफो और गैलरी गाइड मिस लोफसंग चिक्की से हुए एक भेंट वार्ता। उनसे भेंट करता है दोर्जी रेमा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम महिला मंच में आप सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हम आकाशवाणी तवांग की टीम 190 माउंटेन ब्रिगेड तवांग में स्थित मेजर रलिंगना बोब खाटिंग की वीरता का संग्रहालय में आए हुए हैं और हम यहाँ पर मुलाकात करने जा रहे हैं यहाँ के म्यूजियम कोऑर्डिनेटर सनली लीगुम सिंपो जी से। तो सनली जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।
1: थैंक यू।
0: श्रोताओं, शायद आपको याद होंगे कि इस संग्रहालय के उद्घाटन गत 31 अक्टूबर 2024 को हमारे देश के वल्लभ सरदार वल्लभ भाई पाटिल, या उन्हें लोह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, तो उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर इस संग्रहालय के उद्घाटन हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आसाम के शहर तेजपुर से वर्चुअल माध्यम से किया गया। तो श्रोताओं, आपने इस संग्रहालय के बारे में सुने तो बहुत होंगे और आप में से कई लोग यहाँ पर दौरे भी कर चुके होंगे, लेकिन इस म्यूजियम के बारे में विस्तार से आज हम संजय जी से जानकारी प्राप्त करेंगे और आप तक हम जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे। जी हाँ, तो हम म्यूजियम में पहुँचने के बाद हमें सबसे पहले प्रवेश द्वार के सामने ही देखने को मिल रहे हैं कि द सोल ऑफ इंडिया सेक्शन, तो इसकी विशेषता क्या है, इस बारे में संजय जी आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: आप म्यूजियम जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले सोल ऑफ इंडिया दिखेगा। तो इसका रीजन ये है कि सोल ऑफ इंडिया हमने इसलिए बनाया ताकि हम इंडिया को एक तरह से यूनाइट कर सके। तो हमने सोचा कि अगर हम इंडिया को यूनाइट करना चाहते हैं तो हम किस तरह से सबसे अच्छी तरह कर सकते हैं। तो हमारे शेयर्ड स्ट्रगल्स, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल्स की जो कहानी है, उसी की मदद से हम हमारे इंडिया को ट्रूली यूनाइट कर सकते हैं। तो इसी वजह से सोल ऑफ इंडिया, जैसे ही आप म्यूजियम एंटर करेंगे तो आपको वो दिखेगा। एंड देन सोल ऑफ इंडिया पर आपको टोटल 36 कैस्क मिलेंगे। तो हमारे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, सो होल ऑफ इंडिया से हमने कलेक्ट करके यहाँ पे सारी सॉइल रखी हुई है। ईच एंड एवरी लोकेशन हमारी फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड जगहों से कलेक्ट की गई है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमने दीपा से कलेक्ट की है। दीपा पर इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले हमारा झंडा वहीं पर लहराया गया था, तो हमने दीपा से कलेक्ट की है। और फिर झारखंड जैसे जगहों से भी कलेक्ट की है, जहाँ पर नीलांबर और पीताम्बर एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स थे, तो वहाँ पर उन्हें एक पैर पर हैंग कर दिया गया था ब्रिटिश द्वारा, तो उस जगह से भी हमने कलेक्ट की है। तो हमारे रिसर्च के द्वारा हमने उस एग्जैक्ट पैर को ढूंढ निकाला, फिर हमने उसी जगह से कलेक्ट। तो सिमिलरली सारी सॉइल्स ऐसे ही कलेक्ट की गई है। तो इस सॉइल को हमारे एक रॉयल अरुणाचल राइडर्स, एक ग्रुप ऑफ राइडर्स है, उन्होंने पूरी इंडिया ट्रेवल कर ये सॉइल्स कलेक्ट की है। टू बी प्रिसाइज, उन्होंने 25 डेज में 21 स्टेट्स कवर की है, और जो रेस्ट ऑफ द सॉइल्स है वो उनके बाइकर्स ग्रुप की कनेक्शन द्वारा यहाँ भेजी गई है।
0: जी जी, तो इस म्यूजियम के अंदर स्थित द सोल ऑफ इंडिया सेक्शन हमें ये बताती है कि हमारे इस महान देश के लिए देश भर में जहाँ जहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे, तो उन पवित्र जगहों से हमारे अरुणाचल प्रदेश के राइडर्स ने उन पवित्र माटी को लेकर आए और हम आज उन सारे जगहों पर जाकर देखना तो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इस संग्रहालय के अंदर आकर आप उन सारे पवित्र जगहों का दर्शन कर सकते हैं। जी चलिए, तो संजय जी आप हम म्यूजियम के दूसरे सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं और आप हमें बताइए कि मेजर बॉब खाटिंग अ लाइफ ऑफ वेलियर क्या कहता है, क्या इसकी क्या विशेषता है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों को और बाहर के लोगों को ये जरूर जानकारी है कि हमारे तवांग को भारत देश में शामिल करने में मेजर रलिंगना बोब खाटिंग जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, लेकिन उनके जीवन के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है, तो आप हमें बताइए।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर जब आप सोल ऑफ इंडिया देखेंगे, उसके बाद आपको मेजर खाटिंग की जो लाइफ हिस्ट्री है, उनके बारे में, उनकी लाइफ टाइमलाइन, वो सारी आपको देखने को मिलेगी मेजर खाटिंग की गैलरी पर। तो इस गैलरी पर हमने उनकी लाइफ फेसेस रखी है, तो सारी उनकी अचीवमेंट्स, जो पोजीशंस उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में हेल्प, और वो कहाँ पर पैदा हुए थे वो सब। तो आपको अच्छी तरह से जानना है तो आपको खुद म्यूजियम पर आकर विजिट करके सब कुछ जानना पड़ेगा, लेकिन मैं इतना ही बता सकती हूँ, यहाँ पे आपको जब आप इस गैलरी पर आएंगे तो आपको उनकी प्रेजेंस फील होगी, बिकॉज आप जो उन्होंने तवांग ले किया था वो शायद बहुत बड़ी बात है, और वो एक बहुत महान इंसान भी थे, बिकॉज एक ट्राइबल इंसान होके उन्होंने बहुत सारी पोजीशंस अपनी लाइफ टाइम में हेल्प, वो एक टीचर थे, एक सोल्जर थे, पॉलिटिशियन थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, फिर वो डिप्लोमेट भी थे। तो उसी वजह से हमने ये म्यूजियम उनकी

0: याद में बनाया है और उन्हें एक्चुअली 1957 पर पद्मश्री भी मिला था, तो वो मणिपुर के पहले ट्राइबल इंसान थे जिन्हें पद्मश्री मिला था। फिर उन्होंने अपनी एंड ऑफ करियर में बिफोर रिटायरमेंट वो एम्बेसडर टू बर्मा की तरह भी सर्व किए थे। उस समय भी वो एक ओनली ट्राइबल फ्रॉम इंडिया, फर्स्ट ट्राइबल फ्रॉम इंडिया हु सर्व्ड एज एम्बेसडर टू बर्मा थे। एंड अगर आप आगे मूव करते रहेंगे तो आपको उनकी पर्सनल आउटफिट्स देखने को मिलेगी, उनकी फैमिली एंड फ्रेंड्स ने यू नो मेजर खटिंग के बारे में मेमोरी शेयर करते हुए आपको देखने को मिलेगी इस गैलरी पर।
1: जी, हमें इस सेक्शन के अंदर आने के बाद ये पता चलती है कि मेजर खाटिंग ने अपने जीवन में किन पदों को प्राप्त किए थे, किन पुरस्कार को उन्होंने प्राप्त किए थे और उनके द्वारा उपयोग किए गए चीजें, उनके कपड़े और यहाँ तक कि उनकी असली आवाज हमें सुनने को मिलता है। और जैसे कि सनली जी ने कहा कि सचमुच हमें ऐसा लगता है कि मेजर खाटिंग यही है और हम उनके घर आए हुए हैं। और ऐसे ही हम सनी जी के साथ बातें करते करते अब म्यूजियम के तीसरे सेक्शन पर पहुंच चुके हैं जिसके नाम है द टेकिंग ऑफ तवांग 1951। इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी।
0: तो मेजर खटिंग यहाँ पर 1951 पर आए थे और उन्होंने तवांग को 1951 पर ही तिब्बत से आजाद करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में लाया था, बिकॉज एट दैट टाइम तिब्बत के अंदर था तवांग, इट वॉज अंडर तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन। फिर ये जो टेकिंग ऑफ तवांग गैलरी है ये आपको पूरी कहानी इन अ वे, सो इट नरेट्स द होल स्टोरी ऑफ हाउ ही इंटीग्रेटेड तवांग इनटू इंडिया। तो उनकी जर्नी कैसी रही, कौन लोग थे जो इस इंटीग्रेशन पर इन्वॉल्व थे, वो सारी आपको देखने को मिलेगी। एंड दो जो लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन पे यू नो दे हैड हैंड इन दिस इंटीग्रेशन वाज जयराम दास दौलतराम हु वाज देन द गवर्नर ऑफ असम एंड देन सरदार वल्लभ भाई पटेल। यू नो बिकॉज ऑफ हिम वी आर लाइक इट वॉज रिकग्नाइज द तवांग नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड इन टू इंडिया। सो ही वॉज द बिग ब्रेन बिहाइंड दिस होल ऑपरेट, दैट्स वाई वी ऑल्सो कॉल तवांग हिज लास्ट गिफ्ट टू इंडिया। एंड एस वी मूव ऑन, इस गैलरी पर आपको मेजर खटिंग की खुद की हैंड राइटिंग एंड अगेन इंटरव्यूज जहाँ पे पीपल आर शेयरिंग द मेमोरीज और द एक्सपीरियंस या जो उन्होंने फील किया था इंटीग्रेशन के वक्त, वो मेजर खटिंग के बारे क्या सोचते थे और तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे क्या सोचते थे, वो सारी आपको इस गैलरी पर देखने।
1: जी जी जी, अब हम म्यूजियम के अंदर यूं ही चलते हुए अब ऐसी एक मजेदार सेक्शन में पहुंच चुके हैं जिसके नाम है मॉन्यूल ब्लेस्ड लैंड ऑफ द मोनपा, जहां पर हमें ये देखने को मिलते हैं कि मोनपा जनजाति के लोग पुराने जमाने में किन चीजों के उपयोग करते थे, जैसे खाना बनाने के लिए, पहनने के लिए, और कपड़े किस तरह से बुनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है बुद्धिज्म के इतिहास। तो इस बारे में आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगे और जो बाहर से पर्यटक आकर यहाँ देखते हैं उन सारे आर्टिफैक्ट्स को, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं होगी कि इसे किस तरह से उपयोग किया जाता है। तो अगर आपको जानना है तो आपको आगे डिजिटल सेक्शन की ओर बढ़ने होंगे और वहाँ पर आपको सारे चीज़ों को उपयोग किए जाने वाले वीडियो देखने को मिलेंगे।
0: सो दिस गैलरी इज कॉल्ड द हेरिटेज ऑफ मॉन्यूल, यहाँ का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन सब कुछ आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस गैलरी की एक यूनिक बात ये है कि जब आप आएंगे तो आप आर्टिफैक्ट्स को एक्चुअली टच और फील कर सकते हैं। यूजली आप जब म्यूजियम पर जाते हैं तो आप डू नॉट टच वाले साइन देखते हैं, पर इस गैलरी पर आप एक्चुअली टच और फील कर सकते हैं। तो आफ्टर आप वो गैलरी पर टच एंड फील करके आएंगे, उसके बाद आपको डिजिटल गैलरी देखने को मिलेगा। तो इस गैलरी के बिहाइंड थॉट प्रोसेस ये था कि आप वहाँ पर सब कुछ फील टच करेंगे और यहाँ आके आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे डिजिटल कॉन्टेंट्स होंगे, तो आप यहाँ पे लाइफ ऑफ ब्लॉक पास देख सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने वहाँ पे आरा बनाने वाले यूटेंसिल देखी होगी, तो फिर आप यहाँ पे देख सकेंगे कि आरा किस तरह बनाया जाता है। उसके लिए हमारे पास 2 टीवी पैनल्स है जहाँ पे आपको वो देखने को मिलेगा। एनी अदर, छुरपी कैसे बनती है, ब्लॉक पास कैसे जीते हैं, जो आप शिंखा पहनते हैं मोनपास लोग, तो वो कैसी बनती है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। एंड एट लास्टली वी हैव यहाँ पे जो होलोग्राम, दिस इज अ टेक्नोलॉजी, उसे होलोग्राम फैन कहते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगी। एंड देन आपको एक AV डिस्प्ले देखने को मिलेगा, दैट्स ऑडियो विजुअल डिस्प्ले, जहाँ पे आपको तोरग्या, जो यहाँ का बहुत फेमस फेस्टिवल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, तो वो डांस फेस्टिवल और जो कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए जो फेस्टिवल

0: मनाया जाता है उसका भी एक ग्लिम्स आपको देखने को मिलेगा. एंड लास्टली आई फॉरगॉट टू मेंशन, लेकिन जो मोनपा गैलरी है वहाँ पे आपको वर्चुअल रियलिटी दैट्स वीआर हेडसेट्स वो भी आपको मौजूद दिखेंगे. तो वहाँ पे हमने 3 मोनेस्ट्रीज जो तवांग के इन एंड अराउंड सबसे पुराने मोनेस्ट्रीज की तरह जाने जाते हैं, दैट्स क्रोमतेन, किमनास और तकसंग, वो 3 गोम्पा के वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स पर आपको देखने को मिलेंगे. तो इसे हमने इसीलिए रखा है क्योंकि इन मोनेस्ट्रीज में जाने के लिए, एक तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्रीज है, एंड अगर आपको वहाँ पे विजिट करना है तो इधर आपको बहुत हाइक करना पड़ता है या फिर फूड रिस्ट्रिक्शन से आप रसुन नहीं खा सकते, प्याज नहीं खा सकते. तो बाहर से विजिटर्स आएंगे तो अगर वो 2-3 दिन के लिए आएंगे तो एक पूरा दिन वो इन मोनेस्ट्री पे डेडिकेट नहीं कर सकते, या फिर जो बूढ़े लोग हैं यहाँ के या बच्चे हैं वो इतने स्ट्रेंथ वाइज इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो वहाँ पर जा सके, पर उन्हें फिर भी अगर वो म्यूजियम पर आएंगे तो बिना वहाँ जाए उनके मॉनेस्ट्री के दर्शन हो जाएंगे. उसी वजह से हमने वो रखा.
1: तो चलिए, हम एक ऐसी जगह पर पहुँच चुके हैं, एक ऐसी सेक्शन पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमें मेजर खाटिंग की असली स्वर सुनने को मिलते हैं. तो इस बारे में बताइए.
0: सो इस सेक्शन पे इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ डिजिटल गैलरी. तो यहाँ पे आपको मेजर खाटिंग की आवाज़ सुनाई देगी. तो वो 1985 पे उनके मृत्यु के 5 साल पहले वो तवांग फिर आए थे तवांग की कंडीशन चेक करने के लिए. तभी उन्होंने आकाशवाणी तवांग जो है वहाँ पर उन्होंने एक इंटरव्यू दी थी. तो उसी इंटरव्यू के बदौलत हम ऑल थैंक्स टू आकाशवाणी तवांग हम उनकी आवाज़ आज सुन पा रहे हैं, बिकॉज प्रायर टू दिस उनकी कोई रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो कुछ मौजूद नहीं थी. तो इट्स ऑल थैंक्स टू आकाशवाणी तवांग, वी आर एबल टू लिसन टू हिज वॉइस राइट हियर इन द म्यूजियम. एंड आफ्टर आप उनकी आवाज़ सुनेंगे फिर आपको फ्लैग इन प्लान द फ्लैग वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी. सो हमने प्लान द फ्लैग इसीलिए बनाया था बिकॉज उन्होंने तवांग को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर झंडा हमारा इंडियन फ्लैग गाड़ कर ही उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया था यहाँ पर तवांग पर. तो हम हमारे विजिटर्स को वही सेम फीलिंग जब मेजर खाटिंग ने झंडा प्लांट किया था तो वो सेम फीलिंग हम उनको देना चाहते थे. उसी वजह से हमने ये सेक्शन प्लान द फ्लैग बनाया है जहाँ पर आप अपना खुद का झंडा गाड़ कर वो सेम फीलिंग शेयर कर सकते. फिर तो अभी हम टूवर्ड्स द एंड आ चुके हैं. तो आफ्टर प्लान द फ्लैग आपको पिक्चर ऑफ यूनिटी देखने को मिलेगी जहाँ पे आप सरदार पटेल एंड मेजर खाटिंग जो 2 ग्रेट पर्सनैलिटीज है जिसके वजह से हम यहाँ तवांग पर खड़े हैं एंड इट्स पार्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप उन दोनों के साथ भी फोटो ले सकते हैं. एंड लास्टली हम फिर एंट्री फॉयर पर ही आ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर आपको एक कोट भी देखने को मिलेगा. तो वो सेम आकाशवाणी तवांग वही सेम 1985 इंटरव्यू की है जहाँ उन्हें इंटरव्यूअर ने पूछा था कि आप जो यूथ्स ऑफ तवांग हैं उनके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं. तो आपको वो कोट दिखेगा जो मेजर खाटिंग यहाँ के यूथ्स के लिए छोड़कर गए थे.
1: जैसे कि सनली जी ने म्यूजियम के अंदर चलते चलते हमें इस म्यूजियम की विशेषताएं के बारे में बताएं तो हमें काफी अच्छे लगे इस बारे में जानते हुए. और अब हम वापस एक बार प्रवेश द्वार के सामने पहुंच चुके हैं, लेकिन अब हम यहां से अभी जा नहीं रहे हैं बल्कि हमें कुछ और सेक्शन के बारे में और जानने हैं, क्योंकि हमारे अभी गैलरी गाइड लोबसांग छिकी जी से मुलाकात करने तो बाकी है. तो जी हाँ, हम अब लोबसांग छिकी जी से मुलाकात कर रहे हैं, यहाँ के गैलरी गाइड. तो लोबसांग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में. और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे मेडल्स रखे हुए हैं जिसे मेडल सेक्शन कहते हैं, तो इन मेडल्स की क्या विशेषता है आप हमारे श्रोताओं को बताइए.
2: ये सेक्शन जो उनका मेडल सेक्शन है, लाइक वो कुछ गिना चुना इंसानों में से था जिनको दोनों गवर्नमेंट से मेडल मिला था, ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी मिला था और इंडियन गवर्नमेंट से भी मिला था. ये उनका फर्स्ट मेडल है, मिलिट्री क्रॉस मेडल, और इनको रिसीव किया था 1944 में और इसको दिया गया था ब्रिटिश एम्पायर ने. और उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था. और उनका वर्मा स्टार मेडल है, उनको इंडियन इंडिपेंडेंस मेडल मिला है, उनको पद्मश्री मिला है, और उनको पद्मश्री मिला है 1957 को. और उनको अरुणाचल रत्न भी मिला है, उनको अरुणाचल रत्न मिला है इन 2020-21. और वो दूसरा इंसान था जिनको अरुणाचल रत्न मिला है। और फ्रॉम 1987 टू 2020-25 अभी तक में सिर्फ तीन ही को मेडल मिला है और वो दूसरा इंसान है। तो आप यहाँ पे आएंगे तो आपको उनका अचीवमेंट सब

0: यहाँ पे आप देख सकते हैं और उनका आवाज सुन सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप यहीं पे उन्हीं के सामने बैठे हो, उन्हीं का आवाज सुन रहे हो।
1: हम आगे बढ़ते हुए अब इस सेक्शन में पहुंच चुके हैं जिसके नाम है 1962 द वैलियंट वॉरियर्स। इस बारे में फिर हम चिकी जी आपसे जानेंगे, इस बारे में आप हमें बताइए।
0: ये जो सेक्शन है वो 1962 वार के ऊपर में बेस्ड है और जैसे कि आप सभी को मालूम है 1962 में इंडिया में वार हुआ था, वो दो साइड से, एक अक्साई चीन और एक तवांग से। और तवांग में उन्होंने असम तक पूरा चाइनीज आर्मी चले गए थे, पर जो अक्साई चीन है वहाँ पे उन्होंने 2400 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा उन्होंने कैप्चर कर लिया था और वो अभी भी उन्हीं के अंदर में। और यहाँ पे एक पर्सन है, उसका नाम है नीलम टीपी। वो पूरे अरुणाचल से वो अकेला ही था जिन्होंने 1962 वार में हिस्सा लिया था। ये निशी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। और अगर आप यहाँ पे 1962 गैलरी में आते हो तो आपको यहाँ के 1962 वार के ऊपर में उनके बैकग्राउंड के बारे में सब पढ़ने को मिलेगा, न्यूज कवरेज को देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे उन्होंने कौन से एरिया से उन्होंने तवांग में एंटर किया था वो सब मैपिंग देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे 1962 वार में जितने भी गन्स वेपन्स यूज हुआ है वो सब आपको ओरिजिनल देखने मिलेगा। और 1962 वार में जो शहीद हुए थे और उनको जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है उन सभी को आपको देखने मिलेगा ये गैलरी में, और शहीदों के नाम। और यहाँ पे कुछ मूवीज है जो 1962 वार के ऊपर में बेस्ड है और कुछ बुक्स जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। और यहाँ पे रेजिमेंट्स है जिन्होंने 1962 वार में पार्टिसिपेट किया, उनका सिंबल है। और यहाँ पे 56 रेजिमेंट ने 1962 वार में पार्टिसिपेट किया था।
1: जी, तो अब हम एक बार फिर द लैंड ऑफ मोनपास के सेक्शन में पहुंच चुके हैं। तो इसके जो डिजिटल सेक्शन है इस बारे में हमें संली जी ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि चिकी जी आप हमें एक बार फिर यहां पर रखे गए आर्टिफैक्ट्स है, कपड़े है पुराने जमाने के और बुद्धिज्म के इतिहास है, तो इन सभी चीजों के बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: जैसे कि 1951 में मेजर बोब खातिंग यहाँ आए, उन्होंने तवांग को इंडिया के साथ मर्ज किया और उसके बाद 1962 का वार जो जवान इतने शहीद हो गए। और ये सब किसके लिए? क्योंकि ये हमारे जो यहाँ तवांग के जो लोकल है, यहाँ पे जो ट्राइब पाया जाता है मोनपा, उनके लिए, उनका कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, उन यहाँ के मोनपा पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमारा यही मोटिव है कि यहाँ पे जो टूरिस्ट आए उनको दिखाए कि हमारा पहले कल्चर क्या हुआ करता था, यहाँ के लोकल जो है, यहाँ के लोग है जो क्या पहना करते थे, क्या चीज़ें यूज़ किया करते थे। और जो यहाँ के हमारे यहाँ के जो इवन लोकल से अगर वो भी यहाँ आते तो उनको अपना ट्रेडिशन को देखने को मिलता है, जो कुछ कुछ यहाँ पे ऐसा चीज़ है जो अभी सभी जगह में पाया नहीं जाता है, और कुछ ऐसा चीज़ है जो जिन्होंने यहाँ के जो अभी यूथ है उन्होंने कभी देखा नहीं होगा, तो वो सब यहाँ पे दिखाया गया। जैसे कि यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस है, यहाँ पे जैसे कि लेदर बैग है, और यहाँ पे जो कॉइन है जो पहले यूज हुआ करता था, यहाँ पे वेट मशीन है जो पहले यूज हुआ करता था, स्टोरेज बॉक्स जो अंदर से बैम्बू से बना होता है और बाहर से उसको स्किन से कवर रहता है, और यहाँ पे लोकल हाउस को 3D पेंटिंग में भी दिखाया गया है कि उन यहाँ पे लोकल घर कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे हैंडक्राफ्ट कैसे हुआ करता है, तो ये सब यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे VR भी है, वर्चुअल रियलिटी, तो ये ऐसा है कि यहाँ पे आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ये ऐसा मोनेस्ट्री का व्यू कैप्चर किया है जहाँ पे टूरिस्ट इजिली नहीं पहुँच पाते या उनके टूर में वो कवर कर नहीं पाते, और कुछ ऐसा जगह है जैसे कि ख्रमतिन गोनपा जहाँ पे गाड़ी नहीं पहुंच पाता है और वहां पे चल के जाना पड़ता है, तो आपको यहां पे ही बैठ के उसको जैसे कि आप वहीं पे हो ऐसा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो यहां पे ये सब दिखाया गया है और इवन यहां पे हमारा कल्चर जो हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो सब बताया गया है, यहां पे लिखा गया है। और जितने भी हमारे यहां के 7th century से जैसे कि मेराकलामा लोटे ग्याजो उनके बारे में, मेराकलामा लोटे ग्याजो जैसे कि तवांग मोनेस्ट्री बना है उनके बारे में बताया गया है, जैसे कि 7th century में केप कलावांगपो थे उनके बारे में लिखा गया है, गुरु पद्मा समावा के बारे में लिखा गया है, बुद्धिज्म कैसे आए और बुद्धिज्म से पहले हम क्या प्रैक्टिस करते थे, और यहाँ पे हम ये सब अपना जो मोनपा का कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो सब यहाँ पे शो किया गया है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, तो आज हम आकाशवाणी तवांग की टीम यहाँ मेजर बॉब खाटिंग की वीरता का संग्रहालय में आने के बाद, यहाँ सारी चीजों को देखने के बाद और

0: आप दोनों से मिलकर बातें करने के बाद हमें ये समझ में आती है कि मेजर खाचिंग ने तवांग को भारत में शामिल करने में कितने कठिनाइयों का सामना किया और उनके कितने बड़े योगदान हमारे लिए रहे हैं, और उन्हीं के मेहनत के बदौलत आज हम अपने आप को पूरे गर्व के साथ ये कहते हैं कि हम भारत के सबसे सुंदर जिला में से एक तवांग से हैं। और साथ साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि उनके मेहनत, उनके परिश्रम, उनके योगदान को हमेशा के लिए याद रखना है, और उनके सारे चीजें, उनके सारे यादें इस म्यूजियम में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, और हम तवांग वासी मेजर खाचिंग को हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। धन्यवाद।
1: इस शो में आपने सुना मेजर रेलिंगनो वोफ खाटिंग की वीरता का संग्रहालय और इसका महत्व विषय पर म्यूजियम कोऑर्डिनेटर मिस सैनली लिगम सिंगफो और गैलरी गाइड मिस लोफसंग चिकी से हुई एक भेंट वार्ता। उनसे भेंट करता थे दुर्जी ड्रमा। श्रोतोसी के साथ ही कार्यक्रम महिला मंच समाप्त हुआ। हमारा अगला कार्यक्रम सुनने से पहले सुनते हैं यह संदेश।
2: पापा ये सब
3: हाँ ये चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो, उन्हें हटा देना चाहिए।
2: ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी।
3: अरे ये कैसे रह गया?
2: पैसे गए?
3: नहीं नहीं नहीं, उपाय है उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें।
4: दादू ये
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: सही कह रहा है।
1: मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज और साथ ही FM 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोता समय दोपहर के 3:52 हुए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। गीत मंजरी कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए पहला नगमा ये सुनते हैं क्रुक फिल्म से निखिल डिसोजा की आवाज में। कुमार के लिखे इस गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा आइए हम आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म मैरी कॉम से। शव रचना संदीप सिंह के है तथा संगीत शिवम का।

ich habe mir auch nicht Lia Chennai Express Film sie Sunidhi Chauhan Arijit Singh aur Neeti Mohan ki awazon mein ya khoobsurat nagma is geet ke geetkar the Amrita Bhattacharya tatha sangeetkar the Vishal Shekhar shodha samay paana le rahe hain chand hindi filmi nagme Akashwani ke Tawang kendr se कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए आइए कार्यक्रम का अगला नगमा आनंद लेते हैं शिवाय फिल्म से अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की युगल आवाजों में सईद कदरी के लिए इस गीत को संगीत से सवारा है मिथुन ने

श्रोताओं, गीत मंजरी कार्यक्रम का अंतिम पेशकश को हमने लिया है। ब्रेक के बाद फिल्म से विशाल दत्तलानी और एलिसा मेंडोनका की आवाजों में। इस गीत के गीतकार है परोसन जोशी तथा संगीतकार है विशाल शेखर।

श्रोताओं, विशाल दलानी और एलिसा मेंडोनका के गाये फिल्म ब्रेक के बाद के सी नकबी के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी अभी पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता, समय संध्या के 4:30 हुए हैं। अब पेश है शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग। राग रंग कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राग अलाफ और जोत पर रोनो मजुमदार से बांसुरी वादन तथा तबला पर साथ दे रहे हैं दुर्गा प्रसाद। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम राग रंग।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना रोनो मजुमदार से राग आलाप और ज्योत पर बांसुरी वादन तथा तबला पर साथ दे रहे थे दुर्गा प्रसाद। श्रोताओं, इसी के साथ ही शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग अभी पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित, अब से कुछ ही पलों में यानी 4:45 पर सुनिएगा हिंदी में समाचार। तत्पश्चात 4:55 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: यह आकाशवाणी है, अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया, कहा सेवा पर मूलधन ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। अरुणाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स यूनियन आंसू द्वारा शिक्षा से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर आज ईटानगर कैपिटल रीजन में सुबह 5 से शाम 5 तक 12 घंटे का बंद जारी। अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर सशक्त उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी। समिति सियांग और अपर सियांग जिले में प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से संबंधित प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट सर्वेक्षण और इससे जुड़ी गतिविधियों का मार्गदर्शन और समन्वय करेगी। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री वीराम बागे ने एनर्जी फॉर हेल्थ अरुणाचल प्रदेश पहल का उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश के AI सेंटर ऑफ एक्सलेंस यानी AIICO का पहला 10-दिवसीय AI बोट कैंप और हैकाथॉन IIT गुवाहाटी में शुरू। भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रायोजित महीने भर चलने वाले वंदे मातरम कार्यक्रम के तहत पासीघाट स्थित गिरी नोटको में सेवाकांग किनारे बड़े पैमाने पर नदी स्वच्छता अभियान आयोजित। और जापान एशिया खेलों में भारतीय मिक्स निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम आखिरी ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य सेवा

0: हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी सेवा ही मार्गदर्शन सिद्धांत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वडनगर में वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करते हुए ये बात कही।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर करके ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं ने पहचान अंतिम छोर तक पहुंचाने वाली सेवाओं के रूप में बनी है।
1: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। बेस्ड नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते हो तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
0: श्री मोदी ने कहा है कि सेवा की भावना से ही 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब सेवा की भावना देश की नीति में शामिल होती है तो ऐसी योजनाएं सामने आती हैं जिनमें 25 करोड़ लोगों को गरीबों से बाहर निकलने में मदद मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीति, सूचना और शासन व्यवस्था का अपना महत्व है, लेकिन देश निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ावा देने का आह्वान किया।
1: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है, मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
0: अरुणाचल प्रदेश के ओम निशी स्टूडेंट्स यूनियन आंसू द्वारा शिक्षा से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर आज ईटानगर कैपिटल रीजन में सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक के 12 घंटे का बंद जारी है। बंद के दौरान कई स्थानों पर सड़क जाम करने और यातायात बाधित होने की घटनाएं सामने आई है। नाहरलगुन पुलिस अधीक्षक नीलाम नेगा ने प्रदर्शनकारी और कार्यकारी सदस्यों से शांति बनाए रखने और स्थिति को नियंत्रण में रखने की अपील की। हालांकि बंद के कारण राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सामान्य परिवहन और दैनिक गतिविधियां प्रभावित हुई है, जिससे यात्रियों, कारोबारियों और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री वीरम भागे ने एनर्जी फॉर हेल्थ अरुणाचल प्रदेश पहल का उद्घाटन किया। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार और सेक्लो फाउंडेशन की संयुक्त पहल है। इस पहल से बिजली आपूर्ति बाधित होने के दौरान स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्यशील बनाए रखने, डीजल और निर्भरता पर कम करने और अधिक विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि इस पहल को पूरी तरह कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सहयोग से लागू किया है, जिससे राज्य सरकार का वित्तीय बोझ कम हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
2: बैठक में FIPIC शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा की गई और भारत तथा प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग में हुई प्रगति का स्वागत किया गया। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2023 में घोषित 12 सूत्रीय कार्य योजना के तहत हुई प्रगति भी शामिल है। नेताओं ने नवीनीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्यवाही, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। बैठक में समाओ के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तथा फिजी, मार्शल द्वीप समूह, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह और तुवालू के विदेश मंत्री शामिल हुए। टोंगा के वित्त मंत्री ने भी बैठक में भाग लिया। इसके अलावा माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों के न्याय विभाग के सचिव और अटॉर्नी जनरल, वानुअतु के स्वास्थ्य मंत्री, नाउरू के उप विदेश मंत्री तथा प्रशांत द्वीप मंच के महासचिव भी बैठक में उपस्थित थे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर सशक्त उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। ये समिति सियांग और अपर सियांग जिले में प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी SUMP के संबंधित प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट यानी PFR सर्वेक्षण और उससे जुड़ी गतिविधियों का मार्गदर्शन और समन्वय करेगी। मंत्रिमंडल ने इन दोनों जिलों के कुछ वर्गों की ओर से उठाई गई उन चिंताओं का भी संज्ञान लिया।

0: में कुछ निहित तत्वों द्वारा गलत सूचना और भ्रामक जानकारी फैलाए जाने की बात कही गई है। मंत्रिमंडल ने यह भी स्पष्ट किया है कि पीएफआर सर्वेक्षण का शांतिपूर्ण संचालन सियांग और अपर सियांग जिले के निवासियों के साथ लगातार और सार्थक संवाद पर निर्भर करता है। मंत्रिमंडल ने जोर देकर कहा है कि संभावित परियोजना प्रभावित परिवारों यानी पीएएफ्स और स्थानीय समुदायों की आवास कल्याण और आकांक्षाएं पूरी करने की प्रक्रिया में केंद्र हमेशा ही निहित रहेगी। मंत्रिमंडल ने स्थानीय परंपराओं और सामुदायिक हितों का सम्मान करने वाले विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है। साथ ही विश्वास व्यक्त किया है कि संवाद के माध्यम से सर्वेक्षण को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, जो सियांग क्षेत्र और पूरे देश के व्यापक हित में हो। अरुणाचल प्रदेश के एआई सेंटर ऑफ एक्सलेंस यानी एआई को का पहला 10 दिवसीय एआई बूट कैंप और हैकाथॉन आईआईटी गुवाहाटी में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य राज्य के कॉलेज विद्यार्थियों, युवाओं और एआई में रुचि रखने वाले लोगों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रगति, जागरूकता, क्षमता निर्माण और नवाचार को भी बढ़ावा देना है। इस बूट कैंप में प्रतिभागियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पाइथन प्रोग्रामिंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की व्यवहारिक जानकारी दी जाएगी। इसके लिए विशेषज्ञों के नेतृत्व में सत्र, प्रायोगिक अभ्यास और मेंटरशिप की भी व्यवस्था की गई है। ये कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को की पहल के तहत आयोजित किया जा रहा है। ये इंडिया एआई मेटी की पहल से और राज्य के काउंसिल ऑफ आईटी एंड ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत संचालित की जा रही है। इस आयोजन में आईआईटी गुवाहाटी और एनआईटी अरुणाचल के सहयोग द्वारा की जा रही है। शिक्षा मंत्री पीडी सोना ने कहा है कि जिस तरह पुस्तकालय लगातार आधुनिक रूप ले रहे हैं, उसी तरह लाइब्रेरियंस की भूमिका भी अब अधिक व्यापक और गतिशील होती जा रही है। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरियन की जिम्मेदारी अब केवल पुस्तकों और संग्रहों के प्रबंधक के तक सीमित नहीं रह गई, उनसे डिजिटल पहुंच, सामुदायिक सहभागिता, ज्ञान सेवाओं और आधुनिक पुस्तकालय प्रणालियों को सहयोग देने की भी अपेक्षा की जा रही है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रायोजित महीने भर चलने वाले वंदे मातरम कार्यक्रम के तहत पासीघाट स्थित गृतनोत्को में सीबो कोरोंग किनारे बड़े पैमाने पर नदी स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। स्वच्छ नदी स्वच्छ भारत विषय पर आयोजित इस अभियान के दौरान अनुमानित 5.6 टन कचरा नदी के किनारे से हटाया गया। अभियान का आयोजन अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग ने वंदे मातरम की 150 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया। ये पहल 7 से 9 अक्टूबर तक होने वाले भव्य समारोह की पूर्व गतिविधि के रूप में आयोजित की गई। भारत में सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए विश्व साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य ससीला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashvani, the news read by Indu Chuku. Prime Minister Narendra Modi today said that service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said that in politics too, service should remain the guiding principle even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi. The Prime Minister said, Seva Paramo Dharma, service is the highest duty, should remain the guiding principle. Mr. Modi said, service is the highest, is the biggest driving force. He said, whether it is Prime Minister Kisan or the Prime Minister Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for the last mile delivery. The Prime Minister said, it is only when there is a spirit of service, 4 crore poor have received the permanent houses. The Prime Minister said, we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India. He said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired a meeting of the foreign ministers of the Forum for India-Pacific Islands Cooperation, FIPIC, on the sidelines of the 81st United Nations General Assembly in New York yesterday. The meeting reaffirmed

당기 나가다다 페선 아수르세 뉴로 삼산농불 눈렉 레림 딩딕섬 죽다치 다워티시세 뉴로 삼산나사

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ और साथ ही एफएम फ्रीक्वेंसी 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 6:10 हुए हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में आइए पहले सुनते हैं एक जरूरी सूचना। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर तवांग के कार्यालय से प्राप्त सूचना अनुसार सभी किसानों को यह सूचित किया जाता है कि विभाग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रश्नों ई केवाईसी भूमि में बीज बोने और अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों के संबंध में आगामी 28 सितंबर 2026 से 30 सितंबर 2026 तक एक विशेष पीएम किसान शिविर का आयोजित करने जा रहा है। यह शिविर पंजीकरण शिविर नहीं है, इसलिए शिविर के दौरान कोई नया पंजीकरण नहीं किया जाएगा। योजना के सभी मौजूदा लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे शिविर में उपस्थित हो और यदि आवश्यक हो तो ई केवाईसी, आधार सीडिंग और अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां पूरी करें। संबंधित ब्लॉकों के सभी एडीओस एएफएस से अनुरोध है कि वे जहां भी संभव हो अपने अपने ब्लॉक्स में उक्त विशेष शिविर के लिए आवश्यक व्यवस्था करें। इस विशेष शिविरों के संबंध में किसी भी अतिरिक्त जानकारी या सहायता के लिए लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे अपने अपने ब्लॉक के एएफएस और एडीओ से संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुआ। शुद्ध कार्यक्रम जरोखा के अंतर्गत आइए हम आपको अवगत करवाते हैं आज के शीर्ष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। आज के शेष कार्यक्रमों में आपसे दो देर बाद यानी शाम 6:20 पर सुनेगा दैनिक शेड्यूलर में शारो गांव के अमारिंजन संगमो और साथियों से गुंचक सुम्पा कैप्टो सिमगे गंदन लगेमा डोलमा ग्यावे जप्तन पोइथो चंडेसक तोयपा और गोवा। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित शाम 7:00 सुनिएगा हिंदी में समाचार तथा शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आज शाम 7:10 पर सुनिएगा

एलडी स्कॉलर्स होम विद्यालय की पांचवी कक्षा के छात्र डुंडु फांगमो धमगे से एक कविता। कविता का शीर्षक होगा आइसक्रीम मैन। आज शाम 7:11 पर आह्वान ले सकेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम एक और अनेक के अंतर्गत फिल्म परिनेता सलाम ए इश्क है बेबी पी फिल्म पी के क्रिश फिल्म कवि अलविदा ना के ना और फिल्म फनासी चंदनक में। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तत्पश्चात 7:50 पर सुनेगा रीजनल न्यूज। आज शाम 7:55 पर सुनेगा एक देशभक्ति गीत जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म खेले हम जी जान से एक देशभक्ति गीत सोहेल सेन और साथियों की आवाजों में। आज रात्रि 8 का समय रहेगा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का। रात्रि 8:30 पर सुनेगा स्पोर्ट्स स्कैन। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या तथा ठीक रात्रि 9 आप सुन सकेंगे न्यूज एट 9। आज रात्रि 9:15 पर कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की एक बार फिर सूचना दी जाएगी। आज रात्रि 9:16 पर आज के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं ये तो थी आज की शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए श्रोताओं अपने माप को कल यानी 25 सितंबर 2024 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से रूबरू करवाते हैं। हमेशा की तरह हमारा कल का सफा आरंभ होंगे कल दोपहर 2 मीठे न्यूज के तहत। कल दोपहर 2:15 पर सुनेगा हिंदी में समाचार दोपहर समाचार के अंतर्गत। कल दोपहर 2:30 पर सुनेगा कार्यक्रम वंदना में पहले गांधी स्मृति तत्पश्चात देवशीष दास गुप्ता के स्वर में चंद हिंदी भक्ति गीत। कल दोपहर 3 आप आनंद ले सकेंगे कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत बेंग्या हेमंता और ताना तारम तारा के आवाजों में निशी आधुनिक गीत। कल दोपहर 3:30 पर सुनेगा कार्यक्रम मेरी बात। इसके अंतर्गत आप सुन सकेंगे दोर्जी कांडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग के थर्ड सेमेस्टर के मिस संग यूटन से वृक्षारोपण का महत्व विषय पर जन शब्द। 3:33 पर सुनेगा महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। इसके अंतर्गत आप आनंद ले सकेंगे लीला मजनू फिल्म से आतिफ असलम और ज्योतिका टांगरी की आवाजों में। बागी फिल्म से मीट प्रोस और मोहनाली ठाकुर के सुरों में। हैप्पी न्यू ईयर फिल्म से श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाजों में और लगेरो मुन्नाभाई फिल्म से श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाजों में चंद गीत। कल दोपहर 3:50 पर सुनेगा कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत फिल्म आरआर, फिल्म एक मई और एक टू, फिल्म वाकफ सेट, फिल्म आयशा, फिल्म एंटरटेनमेंट, फिल्म लीला मजनू, फिल्म रमैया वस्तुवैया, फिल्म थ्री डेज, फिल्म जब वी मेट और फिल्म किस्मत कनेक्शन से चंद नगमे। कल संध्या 4:30 पर सुनेगा शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित कल संध्या 4:45 पर हिंदी में समाचार तथा 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 5 सुनेगा रोजाना की तरह मोनपा कार्यक्रम के तहत नमदर लेरिम। 5:30 पर सुनेगा दैनिक मुख्य सूचना मोनपा में श्री तुप्तन ताशी से। 5:35 पर सुनेगा साप्ताहिक कार्यक्रम कुंजल। 6 लेरिम सीरा। 6:10 पर कार्यक्रम जरोका। कल शाम 6:20 पर सुनेगा मेरू गुनपा गोर्शी ग्रुप के आमा यांगचिन लामो और साथियों से बोध भक्ति भजन। कल शाम 7 हिंदी में समाचार तथा शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

कल शाम 7:10 पर सुनेगा कार्यक्रम आज की कविता में एलडी स्कॉलर्स होम विद्यालय की 5वीं कक्षा के छात्र टाइशी वॉयजर से एक कविता। कविता का शीर्षक रहेगा लाइफ। कल शाम 7:11 पर आप आनंद ले सकेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत एक ही संगीतकार जतिन ललित के संगीत निर्देशन पर चंद हिंदी फिल्मी नगमे। इसके अंतर्गत आप आनंद ले सकेंगे फिल्म अलविदा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, प्यार कोई खेल नहीं और प्यार किया तो डरना क्या फिल्मों से चंद नगमे। शाम 7:35 पर प्रादेशिक समाचार तथा 7:50 पर रीजनल न्यूज। कल शाम 7:55 पर सुनेगा एक देशभक्ति गीत टाइगर श्रॉफ की आवाज में। कल रात 8 का समय रहेगा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश चंद पुराने हिंदी फिल्मी नगमे। कल रात 8:30 पर सुनेगा स्पोर्ट्स स्कैन। रात 8:45 पर समाचार संध्या तथा रात्रि 9 न्यूज एट 9। कल रात 9:15 पर अगले दिन प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। कल रात 9:16 पर कल के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं ये तो थी आज के शीर्ष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इसी के साथ ही कार्यक्रम जरो खास समाप्त होता है। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं हमारा अगला कार्यक्रम सुनेगा मौन पमे। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भाव हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। श्री मोदी वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणी ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर बल दिया। जनरल सुब्रमणी ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 30 अगस्त को देश भर में आयोजित परीक्षा में लगभग 2,66,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। उम्मीदवार 1 अक्टूबर या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ अन्य तीनों देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए। संयुक्त बयान में कहा गया है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक आर्थिक अभाव का मुद्दा उठाया गया। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की।

उन्होंने कहा कि इन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को अत्यधिक बल प्रयोग, मनमानी गिरफ्तारियों, संचार अवरोध और शांतिपूर्ण समूहों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानूनों के इस्तेमाल से दबाया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार में आज 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1248 अंक गिरकर 73581 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 384 अंक की गिरावट के साथ 23063 पर दर्ज हुआ।

0: of Poovamana Raju, Vishal Tenarasu, Vitteram Raj and Manu T.S. claimed the silver medal, successfully defending the medal they won in the last edition in 2023 in Hangzhou. Siva Kumari has bagged bronze medal for India in women's 10,000-meter final. This achievement marks India's first medal in the women's 10,000-meter event at the Asian Games in 16 years. Indian rowers Satnam Singh and Salman Khan won a bronze in the men's double sculls. It was country's first ever Asian Games medal in the men's double sculls. Later in the day, shooters Ananjit Singh Naruka and Parinaz Dhaliwal bagged the bronze medal in the mixed ski team event. Prime Minister Narendra Modi congratulated all the medal winners on the feat. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोताओं में आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित अंग्रेजी में समाचार। मीडियम में 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ और एफएम फ्रीक्वेंसी 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं समय शाम के 7:10 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज की कविता। आज की कविता में आइए सुनते हैं एलडी स्कॉलर्स होम विद्यालय के पांचवी कक्षा के छात्र डुंडुफ वांगमो दमगे से एक कविता। कविता का शीर्षक है आइसक्रीम मैन।
2: गुड इवनिंग टू एवरीवन, माय नेम इज डुंडुफ वांगमो दमगे। आई एम फ्रॉम एलडी स्कॉलर्स होम एंड आई स्टडी इन क्लास 5। टुडे आई एम गोइंग टू रिसाइट अ पोएम एंड माय पोएम इज आइसक्रीम मैन। When summer's in the city and drifts a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trekking down the street. Beneath his round umbrella, oh, what a cheerful sight, to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. Vanilla, chocolate, strawberry, or chilly things to drink from bottle full of frosty fleece, green, orange, white, or pink. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas. The way the children cluster around, as thick as honeybees. Thank you.
1: श्रोताओं भी आपने सुना एलडी स्कॉलर्स होम विद्यालय तवांग की पांचवी कक्षा के छात्र डुंडुफ वांगमो दमगे से एक कविता। कविता का शीर्षक थे आइसक्रीम मैन। श्रोताओं इसी के साथ ही कार्यक्रम आज की कविता समाप्त हुआ। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं समय शाम के 7:12 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम एक और अनेक। एक और अनेक कार्यक्रम के अंतर्गत आइए आनंद लेते हैं सोनू निगम के संग अन्य कलाकारों से चंद हिंदी फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का पहला नगमा आइए सुनते हैं परिणीता फिल्म से सोनू निगम और श्रेया घोषाल के युगल आवाजों में। इस गीत के गीतकार है सावन किरकिरे तथा संगीतकार है शांतनु मोइत्रा।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा यह आनंद लेते हैं सलाम ए इश्क फिल्म से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की युगल आवाजों में। समीर की रचित गीत को संगीत से सवारा है शंकर एहसान लोयने।

श्रोता भी आपने आनंद लिया सोनू निगम और श्रेया घोषाल की युगल सुरों में कृष फिल्म से ये गीत। इस गीत के गीतकार थे इब्राहिम अश तथा संगीतकार थे राजेश रोशन। श्रोता समय आप आनंद ले रहे हैं चंद हिंदी फिल्मी नगमे कार्यक्रम एक और अनेक के अंतर्गत सोनू निगम के संग अन्य कलाकारों से चंद हिंदी फिल्मी नगमे जिसका प्रसारण आकाशवाणी के तवंग केंद्र से किया जा रहा है। कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते हुए आइए आनंद लेते कार्यक्रम का अगला नगमा सोनू निगम और अलका आदमी की युगल आवाजों में फिल्म कभी अलविदा नायकेना से। गीत जावेद अख्तर के है तथा संगीत शंकर एहसान लॉय का।

आदमी के साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम एक और अनेक अभी पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित अब से कुछ ही पलों में यानी शाम 7:45 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार तथा 7:50 पर सुनिएगा रीजनल न्यूज। कृपया हमारे साथ बने रहें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए और ये भावना प्रत्येक व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से निहित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शन सिद्धांत रहना चाहिए, भले ही कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च पद तक क्यों नहीं पहुंच जाए। श्री मोदी ने ये बात वटनगर में वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान कही। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सेवा परमो धर्म, अर्थात सेवा ही सर्वोच्च कर्तव्य और यही जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा है कि सेवा सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि चाहे पीएम किसान योजना हो या पीएम सूर्य घर योजना, ऐसी अनगिनत योजनाएं अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाने के लिए जानी जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा की भावना के कारण ही 4 करोड़ गरीबों को स्थायी आवास मिल सके हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल डायट के टी परमाणिक ने के मेहा के अवसर पर राज्य के लोगों, विशेषकर एडो मिशमी समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि के मेहा प्रकृति, कृषि और सामुदायिक जीवन के साथ स्थायी संबंध का उत्सव है। उन्होंने कहा है कि जिस राज्य में पीढ़ियों से खेती ने लोगों की आजीविका और परंपराओं को आकार दिया है, वहां ऐसे त्योहार कड़ी मेहनत, कृतज्ञता और सद्भाव के मूल्यों की याद दिलाते हैं। यह पर्व हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं और हमारे पूर्वजों से मिली बुद्धिमत्ता तथा सांस्कृतिक समृद्धि को संरक्षित करते हैं। राज्यपाल ने युवाओं से इन समारोहों में पूरे उत्साह के साथ भाग लेने, अपनी विरासत के बारे में जानने और अपनी विशिष्ट पहचान पर गर्व करने का आह्वान किया। अरुणाचल प्रदेश सरकार का आपदा प्रबंधन विभाग कल से 28 सितंबर तक ईटानगर महानगर के 5 अस्पतालों में अस्पताल मोक एक्सरसाइज आयोजित करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य भूकंप और बहुआपदा आपात स्थिति के दौरान आपदा से निपटने की तैयारियों, आपातकालीन प्रतिक्रिया तथा अस्पतालों और विभिन्न प्रतिक्रिया एजेंसियों के बीच समन्वय को परखना और मजबूत करना है। इस अभ्यास के दौरान भूकंप, बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने, आग लगने और खोज एवं बचाव अभियान, निकासी तथा बड़े पैमाने पर हताहतों के प्रबंधन सहित विभिन्न आपातकालीन स्थितियों का कृत्रिम रूप से अभ्यास किया जाएगा। आम जनता और मरीजों से अनुरोध किया गया है कि वे इन कृत्रिम आपातकालीन परिस्थितियों को वास्तविक आपदा न समझें और न ही घबराएं। 13 जिलों में सामुदायिक आधारित जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हिंथांग फाउंडेशन ने न्यू तुपी गांव में सामुदायिक वन में रहने वाले वन्य जीवों के दस्तावेजीकरण और निगरानी के लिए कैमरा ट्रैपिंग पहल शुरू की है। हिंथांग फाउंडेशन तिराप जिले में स्थित एक पंजीकृत गैर लाभकारी संस्था है। इसके सह संस्थापक और संरक्षणवादी चाजो लुवांग तथा सारा होंगसाई पिछले 5 वर्षों से जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनका विशेष ध्यान स्थानीय समुदायों को संरक्षण प्रक्रिया में शामिल करने पर हमेशा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र पापम पारे ने जुलाई में मोमबत्ती और साबुन बनाने पर व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इनमें बोरुन ब्लॉक के 25 स्वयं सहायता समूहों द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है। प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रतिभागियों में व्यवहारिक कौशल विकसित करना और आजीविका के नए अवसर तलाशने में मदद करना है। प्रशिक्षण 27 सितंबर तक जारी रहेगी। कार्यक्रम में उत्पाद बनाने की व्यवहारिक और प्रत्यक्ष सीख के माध्यम से स्वयं सहायता समूह सदस्यों के आत्मनिर्भरता, उद्यमिता और टिकाऊ आय सृजन के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विराम बागे ने एनर्जी फॉर हेल्थ अरुणाचल प्रदेश पहल का उद्घाटन किया। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अरुणाचल प्रदेश सरकार के

ईश्वर तभी आपने सुना आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित हिंदी तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 7:55 हुए है। आइए अब सुनते हैं एक देशभक्ति गीत फिल्म खेले हम जी जान से सोहेल सेन और साथियों की आवाजों में। इस गीत के गीतकार है जावेद अख्तर तथा संगीतकार है सोहेल सेन।

0: श्रोता, अभी आपने सुना सोहेल सेन और साथियों की आवाजों में एक देशभक्ति गीत फिल्म खेले हम जी जान से। इस गीत के गीतकार थे जावेद अख्तर तथा संगीतकार थे सोहेल सेन। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता, समय शाम रात्रि के 8 बजे हैं और अब प्रस्तुत है आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश चंद सदाबहार पुराने नगमों। कार्यक्रम का पहला फरमाइश की है आप सबने। आप है सेक्टर 67 माहौली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। आप है कोलकाता से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बट्टा बजाज। आप सबके फरमाइश पर ये आनंद लेते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म मनचली से किशोर कुमार और लीना चंद्रवीरकर की आवाजों में। इस गीत के गीतकार है आनंद बख्शी तथा संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: गम का फसाना बन गया अच्छा
2: अच्छा जी।

आप सब है मिहिर नगर उमर खेत महाराष्ट्र से अवजित गावनकर राही मिसेस सरिता गावनकर और प्रिंस एकांश गावनकर पातलापुर मुंबई से आप है सिद्धांत गावनकर परिणीता गावनकर और लाला टुक टुक गावनकर आखार हाइट्स पाधुरा नागपुर से आप सब है मिस दावनी गावनकर आप सबके फरमाइश पर यह आनंद लेते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म जवान मोहब्बत से मोहम्मद शफी की आवाज में। इस गीत को लिखा है हर्षद जयपुरी ने तथा संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

श्रोतो, कार्यक्रम का अगला नगमा आनंद लेते हैं डोर की आवाज फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में। इस गीत को लिखा है शकील बदियानी ने तथा संगीत दिया है रवि ने, और इस गीत की फरमाइश की है नीलेश्वर नगर नरवाल महाराष्ट्र से अफ है पीएस नरवेकर, निर्मला नरवेकर और विशाल नरवेकर। मालकापुर से आफ है नारायण इंगले, सपन तैयारी और आशीष मुरेकर। आप सबके फरमाइश पर आइए आनंद लेते हैं ये गीत फिल्म डोर की आवाज़ से।

श्रोताओं, इस समय आप आनंद ले रहे हैं आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत, जिसका प्रसारण आकाशवाणी का तवंग केंद्र से किया जा रहा है। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा। आप सबके फरमाइश पर आप है पजोनिया जालून उत्तर प्रदेश से, आप है सत्येंद्र कुमार चांसुलिया, आदेश सार्थक और अलौकिक चांसुलिया, मुरादाबाद धौलापुर उत्तर प्रदेश से आप सब है मुकेश कश्यप शीतल कश्यप, सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी रितिक और बलबीर सिंह। आप सबके फरमाइश पर आइए आनंद लेते हैं फिल्म फकीरा से ये गीत हेमलता की आवाज में। इस गीत के गीतकार एवं संगीतकार है रविंद्र जैन।

श्रोतों, कार्यक्रम का अंतिम फरमाइश की है केजी बीवी कंगतेम से आप सब है टाशी सोमो पेमा तेचिन पेमा यंगचिन और धुपतन सोमो। आप सब की फरमाइश पर आयाना लेते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत तुमसे अच्छा कौन है फिल्म से सोनू निगम और सारिका कपूर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है समीर ने तथा संगीत से सवारा है नदीम शवन ने।

श्रोता भी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के वत्सल फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूले, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ ही आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा या रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत यहीं समाप्त होता है। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आपसे कुछ ही पलों में, यानी रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन। रात्रि 8:45 पर आप सुन सकेंगे समाचार संध्या, तत्पश्चात ठीक रात्रि 9 बजे आप सुन सकेंगे न्यूज़ @9। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। मैं हूं प्रशांत कुमार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विशेष शुक्ला।
1: नमस्कार प्रशांत, और हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर ताजा खबर के साथ, जहां हमारे साथ होगी हर मैच की अपडेट, हर मैदान का हाल, वो भी सब कुछ अधिक विस्तार के साथ।
0: तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन का आज का ये अंक। सबसे पहले हेडलाइंस। एशियाई खेलों के वुशु में रोशिबीना देवी ने देश को दिलाया रजत पदक।
1: एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। सीमा कुमारी ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में जीता कांस्य पदक।
0: सतनाम सलमान की जोड़ी ने डबल स्कल्स में जीता कांस्य पदक, बलराज सिंगल्स में चौथे स्थान पर।
1: निशानेबाजी में परिनाज अनंतजीत ने स्कीट मिक्स टीम इवेंट में कांस्य पदक अपने नाम किया।
0: और भारतीय महिला और पुरुष कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बेहतरीन प्रदर्शन चल ही रहा है खिलाड़ियों का रोशिबीना देवी से, जिन्होंने भारत को रजत पदक दिलाया है। जापान एशियन गेम्स में आज रोशिबीना देवी ने वुशु में भारत को रजत पदक दिलाया। रोशिबीना ने महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में ये पदक जीता। सुनते हैं इस मुकाबले पर एक रिपोर्ट।
2: रोशिबीना ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया था। फाइनल में उन्हें चीन की झांग शिया ओयू से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा और रजत पदक से संतोष करना पड़ा। झांग ने दोनों राउंड में जीत दर्ज करते हुए 10-0 से मुकाबले को अपने नाम कर लिया। रोशिबीना का एशियन गेम्स में ये तीसरा मेडल है। इससे पहले उन्होंने 17 साल की आयु में 2018 जकार्ता पालिम्बांग गेम्स में कांस्य और हांगझोऊ एशियन गेम्स 2023 में रजत पदक जीता था। रोशिबीना ने पदक जीतने के बाद क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: अच्छा लगा, ये मेरा थर्ड एशियन गेम्स मेडल है, उसके लिए भी मैंने काफी मेहनत किया है। चैलेंजिंग ये था कि मैं इस बार भी गोल लाने का, पर मैं नहीं दिला पाया। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करके जो भी गलतियां हैं वो सुधार के वापस आएंगे।
2: 25 वर्षीय मणिपुर की एथलीट ने पहले क्वार्टर फाइनल में मकाओ की चू मान सिन को 5-0 से हराकर पदक पक्का किया था। वुशु की सांडा श्रेणी में सेमीफाइनलिस्ट का कांस्य पदक सुनिश्चित हो जाता है। रोशिबीना 2022 में अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहती थी। उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुम निंगत्यास को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई, लेकिन आखिर में स्वर्ण पदक के मुकाबले में चीन की झांग शिया ओयू से हार गयी। रोशिबीना का इरादा इस बार अपने पदक का रंग बदलना था, लेकिन उसमें वो सफल नहीं रही। हालांकि लगातार दूसरे एशियन गेम्स में रजत पदक जीतना उनकी क्षमता को दर्शाता है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: विशेष, रोशिबीना का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। कल भी उन्होंने फाइनल में जगह बनाई थी। उम्मीद की जा रही थी कि वो स्वर्ण पदक देश के लिए लाएंगे, लेकिन ये प्रदर्शन भी दर्शाता है उनके दृढ़ संकल्प को। और विशेष, लगातार अच्छा प्रदर्शन है। आज भी भारतीय खिलाड़ियों ने कई पदक देश के नाम किए। क्या स्थिति है भारत की?
1: प्रशांत, अभी भारत पदक तालिका में 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों के साथ 15वें स्थान पर मौजूद है।
0: जी विशेष, वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: उधर भारतीय एथलीट सीमा कुमारी ने भारत के लिए कांस्य पदक जीत लिया है। सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ के फाइनल में तीसरा स्थान हासिल करते हुए भारत का 16 साल का इंतजार खत्म किया है।
4: सीमा एशियन गेम्स में 10,000 मीटर दौड़ में मेडल जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला एथलीट बन गई। इससे पहले साल 2010 में प्रीजा श्रीधरन ने गोल्ड मेडल जीता था, जबकि उसी इवेंट में कविता राउत ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। सीमा शुरुआती 2000 मीटर में सबसे आगे रही, लेकिन अंत तक आते आते वे तीसरे स्थान पर आ गई और भारत के लिए कांस्य पदक पक्का किया। बहरीन के विनफ्रेड यावी ने स्वर्ण पदक जीता, वहीं जापान की नोजोमी तनाका ने रजत पदक अपने नाम किया। सीमा ने हांगकांग में 2024 एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में सीनियर महिला रेस में और 2026 में 65वीं नेशनल इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: विशेष, एथलेटिक्स में ही

0: एक अच्छी खबर आ रही है। एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। आज का ये दूसरा रजत पदक है और विशेष हम जानना चाहेंगे किन खिलाड़ियों ने ये पदक देश को दिलाया है।
1: प्रशांत, किरण, मनु, जय कुमार, पुवामा, विशाल और विथिया की टीम ने भारत को पदक दिलाकर देश का मान और गौरव दोनों बढ़ाया है।
0: बेहतरीन प्रदर्शन रहा है खिलाड़ी का। श्रोताओं, आपको बता दें कि गुरिंदर वीर सिंह भी उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बना ली है, कल वो खेलते नजर आएंगे।
1: वहीं भारतीय रोवर सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुषों की डबल्स स्कल्स में कांस्य पदक जीत लिया है, जबकि बलराज पंवार पुरुषों की सिंगल्स स्कल्स के फाइनल में पदक से चूक गए और चौथे स्थान पर रहे। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: सतनाम और सलमान ने 6:13.25 के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। चीन के जुडीई और ईदे नी ने स्वर्ण, जबकि उज्बेकिस्तान के पावेल सोरीन और मेखरोजबेक ममादकुलोव ने रजत पदक अपने नाम किया। यह एशियन गेम्स में सतनाम का दूसरा मेडल है। 2023 में हांगझोउ एशियन गेम्स में पुरुषों की क्वाड्रपल स्कल्स क्रू का हिस्सा रहते हुए उन्होंने कांस्य पदक जीता था। इससे पहले बलराज पवार पुरुषों के सिंगल स्कल्स फाइनल में चौथे स्थान पर रहे और पदक जीतने का मौका चूक गए। चीन के झिवेई डैंग ने स्वर्ण, उज्बेकिस्तान के खोलमुर जाएव ने रजत और जापान के तात्सुया सकुरामा ने कांस्य पदक जीता। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात निशानेबाजी पर। भारतीय निशानेबाजी टीम ने भारत को एक और मेडल दिलाया है। परिनाज धालीवाल और अनंतजीत सिंह की जोड़ी ने स्कीट मिक्स टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल को अपने नाम किया। हालांकि भारत की इस जोड़ी से गोल्ड मेडल की उम्मीदें जताई जा रही थी, लेकिन उन्हें ब्रॉन्ज से ही संतोष करना पड़ा। उन्होंने फाइनल में 44 के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज पर कब्जा जमाया। चीन ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जबकि साउथ कोरिया ने सिल्वर मेडल जीता। अनंत और परिनाज का ये इस एशियन गेम्स का दूसरा मेडल है।
1: और प्रशांत, इससे पहले अनंत ने पुरुष स्कीट टीम और परिनाज ने महिला टीम को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई। यह एशियन गेम्स 2026 में भारत का 15वां मेडल है। अनंत और परिनाज ने 138 का स्कोर करके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। स्कीट स्पर्धा में भारत ने यह कुल तीसरा पदक जीता है। इससे पहले भारत की पुरुष स्कीट टीम ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया था। भवतेक सिंह गिल, अनंजिंग सिंह नारुका और मेराज अहमद खान की तिकड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल में 346 का स्कोर बनाकर ब्रॉन्ज जीता था। हालांकि 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए मेडल की सबसे बड़ी उम्मीद मानी जा रही मनु भाकर फाइनल में 5वें स्थान पर रही थी और मेडल लाने से चूक गई थी। इस स्पर्धा के टीम फाइनल में ईशा सिंह, मनु भाकर और सुरुचि इंदर सिंह की भारतीय तिकड़ी के लिए भी निराशाजनक अंत हुआ था।
0: जी बिल्कुल, मनु भाकर से सबकी उम्मीदें थी। हालांकि जो भी प्रतियोगिता में मनु भाकर होती है वो पदक जरूर भारत के नाम करती है, लेकिन इस प्रतियोगिता में भारत को पदक दिलाने में असफल रही। और अब बात कबड्डी पर। एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जापान पर 50-25 से शानदार जीत दर्ज की। इसी के साथ भारत ने ग्रुप ए के तीनों मुकाबलों को अपने नाम कर लिया है। गत विजेता भारत पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर चुकी है। भारत का मुकाबला कल नेपाल से होगा। भारत ने अपने अभियान की शुरुआत बांग्लादेश पर 42-21 की जीत के साथ की थी, जिसके बाद ईरान को 37-23 से हराया था। वहीं आज भारत ने धमाकेदार शुरुआत करते हुए हाफ टाइम तक 32-13 की बढ़त बना ली थी और दूसरे हाफ में भारत ने 18 जबकि और बांग्लादेश ने 12 पॉइंट जोड़े।
1: दूसरी ओर भारतीय पुरुष टीम ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में चीनी ताइपे को 37-21 से हराकर अपना अजेय रिकॉर्ड बरकरार रखा। चीनी ताइपे के खिलाफ भारत ने 3 बोनस पॉइंट्स और 6 ऑल आउट पॉइंट हासिल किए, जबकि उनके प्रतिद्वंदियों ने 9 बोनस पॉइंट और 2 सुपर टैकल दर्ज किए। भारतीय पुरुष टीम ने कल बांग्लादेश को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली थी। इस नतीजे से टीम का मेडल भी सुनिश्चित हो गया था। भारतीय पुरुष टीम कल अपना सेमीफाइनल मैच थाईलैंड से खेलेगी।
0: और अब बात कर लेते हैं मुक्केबाजी पर। एशियाई खेलों में भारतीय मुक्केबाज परवीन ने राउंड ऑफ 16 में तजाकिस्तान की मलिका नोजीमोवा से वॉकओवर मिलने के बाद महिलाओं के 65 किलोग्राम कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। परवीन अब मेडल सुनिश्चित करने से बस एक कदम दूर है। वहीं अलग अलग स्पर्धाओं में कई भारतीय मुक्केबाजों ने स्पर्धा किया, लेकिन आज की क्या तस्वीर रही विशेष।
1: प्रशांत अगर आज की

0: बात करें तो साक्षी चौधरी को महिलाओं के 51 किलोग्राम प्री क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए क्वार्टर फाइनल में परवीन का मुकाबला उज्बेकिस्तान की मौजूदा वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट नवाबखोर खमीवदोवा से होगा। और अब बात स्क्वॉश पर भी कर लेते हैं। एशियाई खेलों में आज स्क्वॉश में भारत का दिन शानदार रहा, जिसमें 6 खिलाड़ी सिंगल्स और मिक्स डबल्स मुकाबलों में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में सफल रहे। आइए जानते हैं कैसा रहा खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
1: महिला सिंगल्स में अनाहत सिंह और तन्वी खन्ना ने अंतिम आठ में अपनी जगह पक्की की। ये दोनों खिलाड़ी अब क्वार्टर फाइनल में आमने सामने होंगी। वर्ल्ड कप विजेता और तीसरी वरीयता प्राप्त अनाहत सिंह ने सिंगापुर की ओ योंग वायलिन को सिर्फ 19 मिनट तक चले मुकाबले में 3-0 से हराया। इस युवा खिलाड़ी ने शुरू से ही मुकाबले पर अपना दबदबा बनाए रखा और अपनी प्रतिद्वंदी को जमने का मौका नहीं दिया। वहीं तन्वी को सिंगापुर की ओ योंग वायलिन के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। पहला गेम 5-11 हारने के बाद उन्होंने जबरदस्त वापसी की और अगले 3 गेम 11-4, 11-5, 13-11 से जीतकर 3-1 से जीत हासिल की। वहीं भारत के 2 खिलाड़ियों ने पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में भी जगह बना ली है। अभय सिंह ने श्रीलंका के रविंदु लग्जरी के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करते हुए 25 मिनट में 3-0 से जीत दर्ज की। उन्होंने ये मुकाबला 11-5, 11-6, 11-0 से जीता और अब उनका सामना जापान के यूनो सुगुए से होगा। दूसरी ओर वीर चोटरानी ने मलेशिया के संजय जीवा को 1:09 तक चले मुकाबले में 11-9, 8-11, 11-6, 15-17, 11-6 से हराया। क्वार्टर फाइनल में उनका सामना पाकिस्तान के इरफान मोहम्मद से होगा। मिक्स्ड डबल्स ड्रॉ में अनुभवी जोड़ी जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिल कुमार ने अपने ही देश के सूरज चंद और शमीना रियाज को 2-0 से हराया। एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय जोड़ी कल क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस के डेविड पेलिनो और जैमिका अरिबाडो का सामना करेगी। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: स्क्वॉश में शानदार प्रदर्शन रहा प्रशांत, जहां सभी 4 भारतीय सिंगल्स खिलाड़ियों और मिक्स डबल जोड़ी के अंतिम 8 में पहुंचने के साथ भारत ने आईची नागोया में अपने स्क्वैश अभियान की मजबूत शुरुआत की है।
2: बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा और कल भी या आने वाले दिनों में उम्मीद होगी कि स्क्वॉश खिलाड़ी जो है भारत को कई पदक दिलाएं। और अब बात हॉकी पर भी कर लेते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आज एक तरफा मुकाबले में साउथ कोरिया को 8-2 से शिकस्त दी। ये भारत की टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत है। टीम ने टूर्नामेंट का आगाज इंडोनेशिया के खिलाफ 13-1 की धमाकेदार जीत के साथ किया है। इसके बाद दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए श्रीलंका को 16-1 से रौंदा था। साउथ कोरिया के खिलाफ भारतीय टीम ने मैच का अपना पहला गोल 4th मिनट में दागा। सिलानंद लाकरा ने भारत के लिए पहला गोल किया। भारतीय टीम का मुकाबला 26 सितम्बर को जापान से होगा।
0: और अब चलते चलते बात करते हैं क्रिकेट की प्रशांत, जहां एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष टीम अपना अभियान 28 सितंबर को शुरू करेगी। वो क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम पहले ही अपनी जगह बना चुकी है रैंकिंग के आधार पर। कैसे देखते हैं भारतीय टीम, कैसा प्रदर्शन रहेगा और किन खिलाड़ियों पर नजर रहेगी?
2: देखिए, विशेष जो टीम का कॉम्बिनेशन है बहुत ही सशक्त है। इसी टीम ने T20 वर्ल्ड कप भी भारत को दिलाया। अगर हम ओपनिंग की बात करें तो टीम में संजू सैमसन है, ईशान किशन जैसे बल्लेबाज है जो कि नंबर 3 पे आते हैं, अभिषेक शर्मा है, उसके अलावा वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी हैं, कप्तान श्रेयस अय्यर का भी लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है, तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी है, शिवम दुबे, तो लगातार जो बैटिंग स्ट्रेंथ है टीम का, मिडिल ऑर्डर, वो भी बहुत ही सशक्त नजर आ रहा है विशेष।
0: जी बिल्कुल प्रशांत, और गेंदबाजी में भी भारतीय टीम ने इस बार जो टीम चुनी है वो बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन रहा है। जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती की जगह विप्रज निगम को टीम में शामिल किया गया है। इसी के साथ साथ अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ी जो है भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाएंगे, और भारतीय टीम पहले से ही गोल्ड मेडल जीत चुकी है एशियन गेम्स में, तो ये अनुभव जो फाइनल खेलने का रहेगा ये भी उनके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। महिला टीम ने अपने मेडल को अभी जो है डिफेंड किया,
2: और विशेष इस पे ये भी कह सकते हैं कि बैक टू बैक चैंपियंस रही है। भारत वर्ल्ड कप जीता है लगातार और स्वर्ण पदक जीता है और डिफेंडिंग चैंपियन भी है एशियन गेम्स में, तो यही उम्मीद की जाए कि इस वर्ष भी भारत को पुरुष टीम भी पदक दिलाए, वो भी स्वर्ण पदक।
0: बिल्कुल प्रशांत।
2: और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।
0: नमस्कार,
2: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। सेंसेक्स 1248 अंक गिरकर 73,581 पर हुआ बंद। जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशिबिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स्ड स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: श्री मोदी ने कहा कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित होनी चाहिए।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात मिशन कर्मयोगी की।
2: मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय मूल्यों पर आधारित और वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाली भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों की क्षमता और कौशल को मजबूत करना तथा सिविल सेवाओं को अधिक नागरिक केंद्रित बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत सिविल सेवाओं को नियम आधारित व्यवस्था से भूमिका आधारित व्यवस्था की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सही व्यक्ति को सही समय पर सही जिम्मेदारी देना है। मिशन कर्मयोगी के तहत iGOT प्लेटफॉर्म पर 1,70,00,000 से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विषयों, कार्यों और व्यवहार संबंधी क्षमताओं से जुड़े 6,500 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े 200 से अधिक पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को नागरिकों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनाना है।
3: हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंटर

0: इलेक्ट्रिक बनाया जाए। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे।
1: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान ने कहा कि मिशन कर्मयोगी की स्थापना विकसित भारत 2047 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से और उच्च गुणवत्ता के साथ हासिल करने की दृष्टि से की गई है।
2: विकसित भारत का जो एक आशावादी हमारे लक्ष्य है उनको समय से प्राप्त करना, गुणवत्ता के साथ प्राप्त करना और सबसे अहम बात जो हमारे नागरिक है उनको गुणवत्ता युक्त सर्विसेज किस तरह से हमारे लोक सेवक प्रदान करें।
1: केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए आईगोट प्लेटफॉर्म पर हर वर्ष निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना जरूरी है। इन पाठ्यक्रमों को उनकी वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटाया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने वनस्पति तेल या स्टार्च से बने कृत्रिम पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत पहले से लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों को अपने नामकरण, लेबलिंग या विपणन में पनीर शब्द का उपयोग बंद करना होगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की।
5: A good book opens a window of ideas, history and experience. It invites us to think, not only to think, to question. Not only to question, to understand and sometimes to look at familiar subjects from a new perspective.
3: प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजासुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर भी बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है।
6: The character of war,
7: युद्ध की प्रकृति तेजी से बदल रही है और हमें भी खुद को इसके अनुरूप ढालना होगा। इसके लिए हमारी औद्योगिक व्यवस्था, खरीद प्रक्रिया और कार्य प्रणाली में भी तेजी से बदलाव जरूरी है ताकि हम बदलती युद्ध परिस्थितियों के साथ कदम मिला सकें।
6: With the changing character of war.
3: भारत ने मजबूत व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को पारस्परिक रूप से लाभकारी बनाने के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव नितिन कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्रियों की बैठक और आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्श में भाग लिया। इस दौरान आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की चल रही समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर निर्वाचन आयोग के कामकाज और विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया को लेकर लगाए गए आरोपों के लिए आलोचना की। नई दिल्ली में

0: पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम निर्वाचन आयोग को किसी भी समय जब वो उचित समझे SIR आयोजित करने का स्पष्ट अधिकार देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। एक रिपोर्ट।
1: गहरे डिप्रेशन ने कोरापुट, गजपति, मलकनगिरी, गंजाम, नवरंगपुर और रायगढ़ जिलों को प्रभावित किया है, जिससे 37 ब्लॉक, 127 ग्राम पंचायतें और 273 ग्राम प्रभावित हुए हैं। 20 वाड़े वाले 5 शहरी इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि 8,082 लोगों को जोखिम वाले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सरकार ने 24 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम चालू कर दिए हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स NDRF और फायर सर्विस के टीमों को तैनात किया गया है और राहत सामग्री का इंतजाम किया गया है। मौसम विभाग ने कल व परसों भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी तेज बारिश की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,248 अंक लुढ़ककर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 384 अंक फिसलकर 23,063 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे कमजोर होकर 95.96 रूपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने सहित कई कारणों से शेयर बाजार में गिरावट आई है।
3: आज स्टॉक मार्केट में जो हमने गिरावट देखा है उसके कुछ प्रमुख कारण ऐसे हैं। सबसे पहले जो कच्चे तेल के दाम फिर बढ़े, दूसरा है बॉन्ड्स की जो यील्ड्स हैं उसमें बढ़ोतरी की वजह से एक नर्वसनेस आई। पर सबसे महत्वपूर्ण जो घटना आज हुई है वो IRDA जो रेगुलेटरी बॉडी है बीमा क्षेत्र में, उन्होंने एक डिस्कशन पेपर निकाला है जिसमें वितरण में जो कमीशन होते हैं उसमें कटौती के बारे में बात की है।
0: और अब जापान एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
4: एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं रोशबीना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।
5: अच्छा लगा, ये मेरा थर्ड एशियन गेम्स मेडल है, उसके लिए भी मैंने काफी मेहनत किया है। चैलेंजिंग ये था कि मैं इस बार भी गोल लाने का, पर मैं नहीं दिला पाया। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करके जो भी गलतियां हैं वो सुधार के वापस आएंगे।
4: निशानेबाजी में अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने स्केट मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मुक्केबाजी में परवीन ने 65 किलो के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। स्क्वाश और टेबल टेनिस के अलग अलग वर्ग में खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में मानवाधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक आर्थिक अभाव का मुद्दा उठाया गया है। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। और जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशिबीना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।